नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चतुर्थ तिथि। तदनुसार दिनांक 26 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले 1 वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की 1 दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
2: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से 1 भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत, भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत।

संगीत सरिता 6:45 पर आप सुनेंगे, जिसके अंतर्गत श्रृंखला चल रही है ताल प्रवाह, जिसका भाग 10 आज प्रसारित होगा। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम को आप पुनः 6:45 पर शाम को सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार की। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी, जिसे आप पुनः दिन में 2 बजे सुन सकते हैं। आलेख एवं स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम को आप पुनः रात्रि 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा। संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। 7:30 में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली 3:00 ओणम ईद ए मिलाद पर चर्चा आप सुनेंगे, नारी की पहचान उसके अपने नाम से, इस पर भी चर्चा होगी। साड़ियों का संसार में आप चर्चा सुनेंगे केरल की फेमस साड़ी बाला रामपुरम साड़ी के बारे में। शब्द हमारा विचार आपके में ईर्ष्या पर बातचीत होगी, व्यंजन के अंतर्गत सूजी के व्यंजन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, संपादन सहायक काजल भदरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान, शाम 4:00। 5:00 छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर आनंद लीजिएगा संध्या रंजन कार्यक्रम का। 4G साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, रात्रि 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी खरीदारी कोट की, लेखक के एल यादव, निर्देशक विजय बैनर्जी। 8:45 पर और रात्रि 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10:00 कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आप सुनेंगे सुंदरकांड का भाग 292।

मंदोदरी के अनुनय विनय का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने पटरानी की नीति युक्त प्रार्थना को मात्र नारी मन का भय बताया। राज्यसभा में जब उसने मंत्रियों से मंत्रणा चाही तो सभी ने श्रीराम की सेना के लंका में उतर आने को एक ऐसी नगण्य घटना बताया जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। ठाकुर सुहाती करने वालों का कहना था, जिसने देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए वानर सेना किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य तथा गुरु, जब ये तीन भयवश अथवा लाभ की आशा में स्वामी की हां में हां मिलाएं तो सत्ता, शरीर और धर्म का नाश अवश्यंभावी होता है। अभिमानी रावण के साथ भी यही हुआ। इस अवसर पर सभा में उपस्थित होकर विभीषण ने हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया। बार बार कहा कि क्रोध, मद और लोभ ये सभी विनाश के रास्ते हैं।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम इस ताल प्रवाह में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं तबला नवाज श्री कालीनाथ मिश्रा जी। अभी तक हमने कई प्रचलित और अप्रचलित ताल सुने हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की है। हमें बहुत अच्छा लगा है, आनंद भी हुआ है, और इसके साथ साथ मीठी मीठी धुन भी हमें सुनने को मिली है। नाच पर, गाने पर जो जो ताल प्रयोग होते हैं उसका खूबसूरत अंदाज हमने सुनी है। मैं मिश्रा जी से ये जानना चाहूँगा कि आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल सुनाएंगे?
2: इस कड़ी में दास बाबू, मैं सोच रहा हूँ कि फोक का एक अंदाज है जो ठुमरी में ये ज़्यादा प्रचलित है, ये ताल जिसे कहते हैं हम चाचर भी।

0: अंदाज है रूपक ती ती ना धी ना धी। अगर हम प्योर तीना धीना धीना बजाएंगे तो ताल कराएगा रूपक ताल, लेकिन अच्छा। ये दीपचंदी खास है, दीपचंदी विलंबित भी बहुत होता है जिसमें बहुत गुनीजन ठुमरी गाय हैं, रुका हुआ दीपचंदी। लेकिन आज मैं फोक टाइप का सुनाता हूँ दीपचंदी आपको।
1: बड़ी अच्छी बात है
0: फारूक भाई।

इस जो इसका जो छंद है इसमें दास बाबू, इसमें बहुत से राजस्थानी फोक भी हैं, बहुत से गाने फिल्मों के हैं, बहुत से ठुमरियाँ गाई जाती हैं हमारे बनारस में, चैती, कजरी, टप्पा, लेकिन इसका एक अंदाज आपको दिखा रहा हूँ कि दीपचंद जी का क्या अंदाज है। पर ये आया रूपक के हिसाब से आया, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना, पर ये

0: तो ये अंदाज लग्गी का अंदाज है वो, कि रूपक से या दीपचंदी से या दादरा से कहरवा में कैसे जाते हैं, अब उसका अंदाज बदल जाता है। और बड़ा एक एक ऐसी जगह, एक ऐसा जगह है श्रोताओं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कैसे हम जाते हैं ताकि लय को तकलीफ न हो,
1: वाह,
0: लय को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए

तो ये है दीपचंदी का एक अंदाज। और क्या बात है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा श्रोताओं को, सिर्फ घराने के ऊपर मत जाओ। मैं इस घराने से हूं, मैं उस घराने से हूं, मैं फर्रुखाबाद का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं बनारस का हूं, नहीं। आप जिस गुरु से सीख रहे हैं उस संगीत को आगे बढ़ाइए। अगर संगीत सरिता यही सोचे कि मुझे सिर्फ घराने को बुलाना है तो मुश्किल हो जाएगा हमको सुनने के लिए। और आज पूरे भारत में हम इसको रेडियो को सुनते हैं कि आज किसका गायन होने वाला है।

0: आज किसका बांसुरी बजेगा, आज किसका सारंगी बजेगी, आज किसका तबला होगा। तो आप रियाज करिए, गुरु से शिक्षा पाइए और उसको कैसे बढ़ाएंगे, कैसे विस्तार करेंगे। हमने कभी देखा नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन कंठे बाबा को, कंठे महाराज जी को,
1: कंठे महाराज,
0: उनको मैंने सुना कि वो गायक के साथ जब बजाते थे या सारंगी के साथ बजाते थे तो उनका तबला भी गाता था।
1: क्या बात,
0: ऐसा सुंदर ठेका देते थे, गड़ा हुआ ठेका, कि लगता था कि शायद ये गाना गा रहे हैं कि तबला बजा रहे हैं। उसी तरह से पूरन महाराज, किशन महाराज जी के पुत्र, अभी यंग कलाकारों में मैं दो चार नाम बताऊंगा, जैसे आज संजू सहाय, क्या बढ़िया तबला वादक हैं, बहुत लाजवाब, गट्टा बायां चाटी, मिजाज भी वैसे अच्छा है। शुभ जो महाराज जी के नाती हैं, राम कुमार मिश्रा, तो एक अंदाज होने चाहिए गाने बजाने का कि हम उसको क्या करते हैं। ये नहीं कि हाँ आप चार प्रोग्राम कर लिए तो आपको ये नाज हो गया कि मैं बहुत बड़े कलाकार से, नहीं नहीं नहीं, आप संगीत की साधना करिए, सरस्वती जी की पूजा करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम आगे करिए, अपने गुरु का नाम आगे करिए।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बातें आपने की है। और चाचर, दीपचंदी, इन तालों को बड़ी अच्छी तरह से आपने प्रदर्शन की है।
0: एक बात और बता जाऊंगा जी, मुझे अचानक देखिए एक गाना याद आया, इसी दीपचंदी का है और म्यूजिक है उसमें शंकर जयकिशन जी का
1: जी,
0: फिल्म है आरजू, आपको याद आ रहा है वो गाना कितना अच्छा है, इसमें प्योर क्लासिकल म्यूजिक, अजी रूठ कर अब।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी 10वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

con la alta azul.

0: मैं एक शोला, ये गीत अभी आपने सुना रंगीन रातें फिल्म से। शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी। केदार शर्मा का लिखा गीत, रोशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत।

अभी आप सुन रहे थे हीर फिल्म से गीता रॉय की आवाज में। ये गीत मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया अनिल विश्वास ने। अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में स्वागत है। आइए एक ही रास्ता फिल्म का गीत अब सुनवाते हैं आपको। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप
0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: सीआईडी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आलम आरा इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना आशा भोसले की आवाज में। शिवन रिजवी का लिखा गीत था, AR कुरैशी का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीत के बोल शैलेंद्र के और धुन एसडी बर्मन की।

0: आशिक फिल्म का गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अभी वक्त हो चला है एक अंतराल का।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में जानी दुश्मन फिल्म का गीत, वर्मा मलिक की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

बन फूल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब हम है राही प्यार के कार्यक्रम का सफर यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा, कीजिए प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
4: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है घर पर। साथियों, घर केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं का वो अनंत आकाश है जिसके नीचे जीवन अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रहा होता है। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा भर नहीं, बल्कि स्मृतियों, संबंधों और संवेदनाओं का जीता जागता संसार है। घर वो जगह है जहां मन को सुकून मिलता है, आत्मा को अपनापन और हृदय को प्रेम का स्पर्श मिलता है। देखा जाए तो घर एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें संस्कारों में, तना विश्वास में और शाखाएं रिश्तों में फैली होती हैं।
1: दो दीवाने शहर में।

इस घर की छाया में व्यक्ति जीवन की तपती धूप से राहत पाता है। जब संसार की भाग दौड़ से थका हुआ मन लौटता है तो घर उसे उसी तरह अपने आगोश में समेट लेता है जैसे शाम ढलने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। घर की दीवारें निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं। वो बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सीख, माँ की ममता और पिता के संघर्षों की साक्षी होती हैं। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी समेटे रहता है। हर कोना किसी स्मृति का संरक्षक बन जाता है।

शायद यही कारण है कि घर से दूर जाने पर उसकी यादें मन के आकाश में चांदनी की तरह बिखर जाती हैं। घर एक भावना है, एक अनुभव है, एक अनमोल एहसास है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की हर भूमिका से मुक्त होकर केवल स्वयं बन जाते हैं, जहां जीवन की उथल पुथल के बाद मन को शांति मिलती है। अगर जीवन एक कविता मान ली जाए तो घर उसका सबसे मधुर छंद है। जीवन एक संगीत है तो घर उसकी सबसे सुरीली धुन है। ये वो जगह है जहां रिश्तों की सरगम गूंजती है और प्रेम की स्वर लहरियां वातावरण को मधुर बना देती हैं।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह है, थोड़ी धूप थोड़ी छांव का मौसम चल रहा है, लेकिन हमारी एनर्जी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, मौसम चाहे जैसा हो, अपने मूड को बनाते हैं एकदम फ्रेश और फुल ऑन एनर्जेटिक, यानी ऊर्जा से भरा हुआ। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब जो गाना बजने वाला है वो आपकी सुबह में घोल देगा म्यूजिक और मस्ती, संगीत से भरा ये मस्ती भरा गीत।

कॉकटेल फिल्म से गीत आपने अभी सुना, जावेद बशीर, निखिल डिसूजा और शेफाली की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम मना रहे हैं ओणम, थिरु ओणम डे। केरल का सबसे प्रसिद्ध और रंग बिरंगा पर्व है ये ओणम, और इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, थिरु ओणम ये कहलाता है। मान्यता है कि इस दिन केरल के प्रिय राजा महाबली अपने प्रजा से मिलने धरती पर लौटते हैं। ओणम फसल समृद्धि, खुशी और आपसी एकता का भी उत्सव है। इस मौके पर घरों के आंगन में रंग बिरंगे फूलों से पुक्कलम यानी फूलों की सुंदर सजावट की जाती है, यानी रंगोली बनाई जाती है। नए कपड़े पहने जाते हैं, केले के पत्ते पर पारंपरिक विशेष भोज परोसा जाता है। इस तरह मनाया जाता है ये संस्कृति और परंपरा से भरा हुआ केरल का भाईचारे से भरा हुआ खूबसूरत सा उत्सव। फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाजें। विशाल शेखर का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक और अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती से ताल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, रीचा शर्मा और आदित्य नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

श्रोताओं, आज का दिन अपने साथ लेकर आया है मोहब्बत, रहमत और इंसानियत का खूबसूरत पैगाम। 26 अगस्त 2026 को भारत में ईद ए मिलाद यानी मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है। यह अवसर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। ईद ए मिलाद सिर्फ खुशी मनाने का अवसर ही नहीं बल्कि पैगंबर साहब की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं को याद करने का भी दिन है। ऐसी शिक्षाएं जो हमें रहम दिली, इंसाफ, जरूरतमंदों की मदद, भाईचारे और इंसानियत का रास्ता दिखाती है। हमारे सभी श्रोताओं को ईद ए मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म कुर्बान से सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाजें थी। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। श्रोताओं, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। अभी ये पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। नेत्रदान का महत्व समझते हुए जागरूकता फैलाने के लिए हम दिवस मनाते हैं, तो हमें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करना बहुत ही जरूरी है। नेत्रदान का महत्व इसलिए क्योंकि मृत्यु के बाद दान किए गए कॉर्निया से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दृष्टि वापस पाने में मदद मिल सकती है। हमें इस पखवाड़े के दौरान नेत्रदान के लिए संकल्प लेना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं संदेश।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। दिल तो बच्चा है जी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुणाल गांजावाला की आवाज है, संजय छल ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी जरूरतमंद के काम आना, सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: चित्रलोक में वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्छल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे देता था, कहीं फिल्म वालों को भी कैसे दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसे देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा, तो काफी एक एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि ये जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद निहलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति जो पिक्चर थी, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चलेगी पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक 1.5 साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ बोल के, किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी, मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है। तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं। तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे। तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था, मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि ये पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा, और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में। तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर बड़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक। तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने देखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वही डिसीजन लिया। और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
0: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं।

0: बात होता है,
1: जी
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये,
1: जी
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज 3 समझ में किसको आएगा, लोग बहुत कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है,
1: जी
0: कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये,
1: जी
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज 3 होना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से पूरे टीम ने के मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, और मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहां जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी।
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ, ऐसे ही हमारा वही खेल की गुठलियां, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और उस
1: मिट्टी में।
2: वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
2: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत
2: सिखाई जाती थी।
3: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
2: मेरे
1: कौन से गांव की बात है
2: ये? जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
2: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे मेडिटेशन, ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी। तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
2: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते
1: मेरा
0: हैं।
1: कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे
0: जी,
1: हुए
0: जी।
1: तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं हमने सुना है, हाँ। गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। हाँ। कमाल
0: जी, आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर
0: है?
1: वो अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं और ज्यादातर लोग, तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी, जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: राकेश देशमुख है, आपकी कैसी
1: भुमिका? हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, तो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया।
0: हाँ हाँ।
1: बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
0: अच्छा।
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल
0: जी। अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर,
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
0: क्या बात है, प्रतिभा जी
1: मेरी
0: की
1: भी
0: फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
1: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम वही वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि वो पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
1: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी
0: जी।
1: और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब। तो उन्होंने किया, फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
0: तो रामगोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
1: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं, अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ, हाँ मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहाँ बुलाया, उन्होंने एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे, तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
0: क्या बात है,
1: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
0: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुना है।
1: याद है तुमको तूने कहा था तुझे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
3: क्या हो?

0: कसम वो इरादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
0: इन्होंने मेरा
1: सारे
0: बहुत बार दिल तोड़ा
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
0: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
0: समय
2: बोल
0: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
0: बहुत
2: हजार
0: ज्यादा पुराना
2: हुए,
0: गाना है
2: कोई
0: वो
2: यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन
0: यहाँ
2: गाना कमाल है
0: गिरा।
2: ये।
1: नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
0: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
1: वो
0: पैर
1: तो
0: तक पसंद
1: पसंद तो
0: करते
1: शादी के
0: हो।
1: पहले होता है, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
0: नहीं,
1: पत्नी
0: वो
1: में।
0: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती
2: अब हम क्या
0: उनके
2: उससे ऊपर उठ चुके हैं।
1: बारे
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए, फिर
1: में
2: दोबारा से प्यार हो गया। अभी
1: ऐसा
2: हम वो वाली स्थिति में चल रहे
1: अच्छा एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि
2: हैं।
1: लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा,
2: कभी
1: बहुत
2: ऐसा
1: बढ़िया।
2: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
0: रात
2: को।
0: गई बात गई।
2: हाँ गई बात गई,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं, अभी हम कितनी उम्र बची है इसमें भी, अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
2: बिल्कुल
1: का।
2: बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
0: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते
1: बिल्कुल, और कोई बात, घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर रख
0: नहीं,
1: देना।
0: ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज घर में, उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ
1: अच्छा,
0: चीजों
1: क्या
0: को।
1: बात है, बहुत
0: मैंने
1: बढ़िया।
0: इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
1: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं, कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना, ये बहुत
1: सच
2: बेकार
1: बोल
2: लगती
1: रहे
2: हैं।
1: प्रतिभा जी चलिए मान
0: हाँ,
1: लेते हैं।
0: करती हूँ मैं
1: बताइए
0: ऐसा।
1: अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
0: यशपाल, तुमको कौन सा रंग पसंद
1: नहीं, आपको अपने से
2: है?
1: बताना
2: जो
1: है
2: कुर्ता हमेशा पहनता हूं।
0: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं,
1: का रंग।
2: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगती थी ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई है।
1: ओहो, क्या बात
2: वो ड्रेस
1: है
2: में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो
1: जी।
2: राजस्थान के या
1: हाँ
2: किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी,
1: क्या बात
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो
1: क्या
2: टीवी
1: बात
2: नहीं है, रेडियो है
1: है
2: कि अरे नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ।
1: श्रोता सुन रहे हैं वो
2: हाँ
1: इमेजिन
2: हाँ
1: कर
2: हाँ
1: लेंगे।
2: हाँ तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर, तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
0: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: भूल
0: वैसे
1: जाते हैं,
0: मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: मतलब आप गांठ रख लेती हैं मन में।
0: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी
2: अरे
1: ईमानदार
2: बेकार
1: से।
2: में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए,
1: देखिए यहाँ
2: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना।
2: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल की।
1: जी जी,
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
1: जी,
2: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
0: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
2: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी, पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
1: जी,
2: 5 साल लगे बनाने में।
1: क्या बात है,
2: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
1: जी। आपने डायरेक्ट भी की है?
2: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
0: मुझसे आया था
1: जी,
2: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की
1: जी,
2: उसमें कहानी थी, एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है और वो अपने बच्चों
0: वो
2: को सब कुछ दे देता
0: प्ले
2: है
0: मराठी का नट सम्राट।
2: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है
1: जी, जी, जी।
2: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी, तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाने शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत है, तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
1: जी,
2: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
1: जी,
2: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन, उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा?
2: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है, और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को?

0: राउडी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: राउडी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस, शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जा कर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो वहाँ गए थे शूट करने, अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं।
1: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है
0: जी।
1: तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सेलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं, फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
0: जी जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप।
1: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
0: जी जी जी जी,
1: हाँ, उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा सा, एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है, तो उसका रोल था मेरा,
0: बिल्कुल।
1: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं, तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने और ओपनिंग फिल्म, और
0: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़
1: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे
0: जी। प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया है, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
0: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आखा एक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
0: क्या बात है,
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी दो चार लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है। तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं, शुरू किया हमने। और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके
0: जी
2: होंगे
0: जी
2: या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड। पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया
0: जी
2: और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो, ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
0: जी
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली,
0: जी जी
2: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
1: लॉकडाउन था उस वक्त।
0: जी
2: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे। ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था,
0: चलो
2: पहले 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पॉन्स ऑनलाइन में भी रहा।
0: और अब वेदा कुनवा में
2: ऑफ कोर्स अब
0: हो
2: तो
0: रहा है,
2: फिजिकली करते ही
0: तो
2: हैं।
0: बहुत बढ़िया है। और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी
2: बिल्कुल
0: हो सकते हैं।
2: बिल्कुल होना ही चाहिए।
0: और प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
2: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर
0: अच्छा वो प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
2: नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे,
0: हाँ।
2: तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना।
0: कोई रोल दे दो हमें भी, ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों के नाम
2: मतलब
0: बताइए।
2: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है,
0: जी
2: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो,
0: जी
2: नो
0: जी
2: एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
0: अच्छा क्या बात है।
2: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे, और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
0: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी
2: हाँ
0: सी बातें और करते हैं।
2: जी,
0: एक गाना बताइए कौन सा सुनवाए।
2: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी? उन्होंने
1: मैं
0: तो बताया,
1: इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का, एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान
0: जिक्र
1: तो
0: करना
1: ऑफ कोर्स
0: चाहती हैं?
1: मेरी बहुत
0: और
1: ज्यादा
0: कुछ फिल्मों के
1: फेवरेट
0: नाम?
1: है, और अब तक 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये रे ये एक्टिंग
1: हाँ
0: ठीक नहीं
1: मैं
0: कर?
1: बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान
1: हाँ
0: प्रदान
1: मुझे
0: हुआ?
1: तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का,
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देते हैं, सिखा देते हैं ना जो कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूं अब। मैंने समझने की कोशिश बहुत की क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे, इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी, फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे, इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें। तो हुआ क्या कि ये NSD में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलते थे, माझा सेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया इस अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है। बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए, अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ो और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला ऐसे?
1: मैं तो
2: अरे
1: सब
2: मुझे,
1: समझती हूँ।
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ही प्यार से बस। बाकी मुझे कुछ क्या बोलते
1: नॉन
2: तरीके,
1: रोमांटिक आदमी है
2: हाँ एक नॉन रोमांटिक, बिल्कुल ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ है। मैं बिल्कुल अखड़ा आदमी हूँ, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली, कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए, और मैं सोचूं यार मैं तो मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसीलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब
0: जी
2: हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। मैं जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात
2: और पति
0: कही
2: पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि
0: है।
2: खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो
0: चलिए।
2: सीख लिया है, तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं, बिल्कुल
0: सच्चा
2: सही रहते
0: प्रतिभा
2: हैं,
0: जी ऐसा हाँ?
2: कभी कुछ होता
0: कि
2: नहीं ऐसा
0: आपकी गलती हो
2: हमारा।
0: और ये मानते हैं कि हमारी गलती
1: नहीं नहीं इतने भी शरीफ नहीं
0: है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता है कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते हैं और फिर हम भ्रम में रह जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
2: हाँ
0: तो
2: ये रातें
1: ये
2: ये मौसम
1: मौसम
2: नदी
1: नदी का
2: का किनारा
1: किनारा
2: ये
1: ये
2: चंचल
1: चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा सब देसी कढ़ी चावल हो गया, या वहाँ का राजमा चावल हो गया, या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है,
1: और हमारा ही खाना
0: वाह।
1: हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा दे खा जाते थे।
0: अच्छा, तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है, बना
0: बना के
1: लेता हूँ।
0: खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा
2: खिलाते हैं।
0: जी, तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे
1: नहीं
0: श्रोताओं
1: नहीं
0: को।
1: बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीज़ों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े,
0: ओहो,
1: और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके कर करके हमने तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए। और साइकिल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे, और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर अंदर बाहर, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाए, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे, हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान, उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे रंग की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली, और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था, क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का, घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा, और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए, और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू, एक चीज पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
0: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
2: जनरेशन,
0: एक
1: बाप रे,
0: खिलौना बहुत
2: कुछ
0: कीमती हुआ
1: हमारा,
0: करता
1: हम
0: था,
1: तो
0: अब
1: 20-20 पैसे, 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
0: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: नहीं
0: यशपाल
1: मैं
0: जी अपने आप
1: तो
0: बताइए।
1: सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम ना दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता, जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी

0: का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास कर के हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर,
1: जी बिल्कुल
0: करो मत, हो जाओ।
1: बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया, जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं। कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है, समझौते
2: नहीं,
1: किया।
2: मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियाँ अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल। और
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग, बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
0: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो
2: जइयो
0: कहाँ
2: कहा
0: से
2: के
0: हुजूर।
1: हुजूर। क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार
2: नमस्ते।
0: ममता जी, थैंक यू सो
2: थैंक यू
0: मच
2: सो
0: फॉर
2: मच।
0: सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: Taranga, taranga.
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ। आवाज हैं कादिर गुलाम मुस्तफा, मुर्तुजा गुलाम मुस्तफा और साथियों की। इस गीत को लिखा है शौकत अली ने, धुन है ए आर रहमान की, फिल्म का नाम है फिजा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए समाध फरमाए एक फिल्मी कवाली गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, मन्नाडे, एसडी बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन, फिल्म का नाम है बरसात की रात।

शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समाप्त कीजिए गुलुकार तलत अजीज की आवाज में। मौसकी तरतीब दी है फिदा हुसैन ने, एल्बम का नाम है ये मिलन ख्वाब सा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी एल्बम गीत सुनिए, गायक और संगीतकार अदनान समी की आवाज में। गीतकार हैं समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए, गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में। कलाम है इब्राहिम अश्क का।
3: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है,

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। कलाम है इब्ने इंशा का।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
2: जी,
0: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है
2: अजी जी?

0: घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
0: अजी जी

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
3: आह, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं।

0: जो राजस्थान में ही है।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: हाँ,
3: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत।

फोरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी, शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ, ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
12: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
6: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है।

0: है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत है आनंद बख्शी का। गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से संवारा है शंकर जय किशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत। आवाजें हैं मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की। शायर हैं साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम सुनने के लिए जरा इबारत ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो जो श्रोता फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पर नहीं हैं, उनके लिए हम इबारत जरा पढ़कर सुना देते हैं। जिंदगी में मिलती है जो मोहब्बत की घड़ी, तो दिल नील गगन की सैर करता है। वो पुरानी यादों की ही मेहरबानी है, सावन की बूंदें जब बरसती हैं, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे मनमीत बन जाते हैं। और बासंती पवन पागल बनकर बहती है। यहाँ पर कोई गाना याद आया? कौन सा गाना याद आया? हमें वैसे लगता है कि बासंती पवन पागल एक ऐसे कमी गाने जिनमें ये तीनों शब्द आते हों, लेकिन अगर आपको याद आए तो बताइएगा जरूर। बहरहाल आगे जरा पढ़ दूं तो दिल पूछ बैठता है कि ऐ संदली हवा तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में। तुम्हारे इंतजार में चंपा कली देखो जो कि जाए है, इस मौसम में कपट का कोई काम नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, जब ऐसा लगे कि सजनवा बैरी हो गए हमार, तब भी वही पुरानी हंसी याद आ जाती है जो कभी लाल लाल होठों से छलकती थी, मतलब लाल लाल होठुआ से छलकती थी। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया आपको? कोई लोकगीत है, याद कीजिए, फिल्मी लोकगीत, तलत महमूद की आवाज है। हमने हिंट भी दे दिया, पर आखिर में जब मन थकता है तो भक्ति ही सहारा बनती है। हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, ये आस हमेशा रहेगी कि गंगा मैया में जब तक पावन धार बहेगी प्रीत अमर रहेगी। मतलब गंगा मैया में जब तक, आगे बताइएगा। घाट पर ढलती शाम में जैसे कोई पुकारता है, नदी नारे न जाओ शाम, पर लहरों के सन्नाटे में बस यही मलाल रह जाता है कि नदिया किनारे हेराई आई कंगना। जो छूट गया वो समय की धारा में बह गया, पर उसकी सुरमई गूंज आज भी यही ठहरी हुई है। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपने इबारत पढ़ी थी, अब जब इबारत अपने आप से पढ़ी थी, जब मेरे मुंह से सुनी ये इबारत, तो आपके भीतर कुछ अलग भाव भी पैदा हुए होंगे। अब बहुत सारे भाव हैं इसमें, तो अब उन शब्दों को याद कीजिए जिन शब्दों से गाने आपके जहन में इस समय आ रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे श्रोता नदी के बारे में लिख रहे हैं, तो हाँ नदी तो है इस शब्द में, नदी वाले कौन से गाने आपके जहन में वो भी बताइए। और ये भी बताइए कि किस नदी के किनारे आपका घर है, मतलब आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, आपके गाँव में कौन सी नदी बहती है, ये भी बताते चलिए। और हाँ, ये जो बातें हैं, गंगा मैया की बात भी इसमें है, गंगा मैया वाले कौन से गाने हैं वो जरा साझा कीजिए, और गंगा मैया से जुड़ी कौन सी याद है आपके भीतर। चलिए अब यादें और बातें साझा करते रहिए, लेकिन अब जरा सुनिए गाना और पहले भी बूझिए कि इस गाने में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म आंखें, जिन्हें हीरो हीरोइन का नाम नहीं पता वो बता दें गीतकार संगीतकार का नाम। आंखें फिल्म का गाना, फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आंखें फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत था और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गांव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से ऊबे या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहाँ तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नज़दीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल ज़रा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं, हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और आगे लिखा है, ऐ संदली हवा तू कहाँ ये बता, फिर सीधे जोड़ता है इस नगमे में, पूरी इस हमारी इबारत को गानों से इन्होंने जोड़ दिया है। और अंत में ये भी लिखा है, चंपा कली देखो झुकी जाए, किशोरदा की शरारती आवाज़। और कुछ श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई, मेरी 10-12 गानों में से पहला गाना ही शामिल हो गया। गनीमत है कि आपने शिकायत नहीं की कि मेरी पसंद का गाना शामिल नहीं हुआ। चलिए, हो सकता है आपका गाना शामिल हो जाए, मतलब आप सभी में से। तो आप अपनी पसंद लिखते रहिए और ये है हमारी पसंद और आप सबकी पसंद। बताइए जरा, गीतकार और संगीतकार का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना, फिल्म उसने कहा था। और रिमझिम बरसात से जुड़ी हुई कोई खास बात है वो भी साझा कीजिए आप।

भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानवी और साहिल लुधियानी और रवि शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार कौन है, शैलेंद्र और सलिल चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ से, मचलती हुई हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। क्या बात है, बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं। हालांकि ये सारे गाने हमारे जहन में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। एक श्रोता ने लिखा है गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने ले जाते हैं। पीली साड़ी मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं जो नारंगी रंग का होता है। और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही

गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बनारस से हूँ, वहाँ गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में माँ नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहाँ कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। भाई, नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है, लेकिन डैम 3-4 हैं, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वही माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक, आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूँ तो वहाँ गोमती नदी बहती है, और कानपुर ससुराल है तो यहाँ गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहाँ नर्मदा नदी क्योंकि हम MP वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता, चंपा कली देखो नदिया किनारे है राई, आई कंगना मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी, सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया, लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है। तो अभी जो गाना सुनवाया था फिल्म उसने कहा था, उसमें भी तलत महमूद की आवाज थी। अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, लागी नहीं छूटे रामा। गीतकार संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थीं। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सोंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गाँव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती हैं। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं, जहां पर नदी से घड़े घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं। वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहाँ पर एक ये संदेश भी देना ज़रूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रख कर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम माँ समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं? क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं, या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है, जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता, लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल। और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

ओ बसंती पवन पागल, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। ये सवाल भी हमने पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, पद्मिनी और राज कपूर। और ये भी हमने पूछा था कि कहाँ पर ये गाना फिल्माया गया है। सभी श्रोताओं ने क्या, बहुत ज्यादा तादाद में श्रोताओं ने जवाब सही दिया, जबलपुर के भेड़ाघाट में फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम के साथ ही नदियों की चाल भी बदल जाती है। जब बारिश आती है तो जमीन बदल जाती है, गर्मी से सूखे तालाबों में पानी का नीचा बिछ जाता है। मौसम कोई भी हो, वो अपने प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में रहता है, इसलिए मौसम के साथ छल छद्म करने का कोई काम नहीं। बारिश में नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्री के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाएं। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हमारी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे श्रोता नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुन कर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवन दायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम वहीं घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की सरसराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है। और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं और बहुत

बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं, लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना। कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो ज़रा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात ज़रूर बताइए। मुकेश की आवाज़।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं, बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

बोलो खुदा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। और ज़रा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में

मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पावना राम नदियां हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन जरा पहली बूझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहाँ ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी, और ये हमारा सवाल था गंगा मैया। ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है, शैलेंद्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी। मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है, फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलेक तो मुंह पर लगा रह जाता था, तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में 1 रुपए के लिए झूठ बोला था, वो मार पड़ी कि अभी तक याद है, जीवन भर याद रहेगा। और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है मार पड़ती है उससे आप अपने

को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो हे पियरे चढ़ाई, वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है, शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था, चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था। और बात शैलेंद्र की चली है, इसी महीने में शैलेंद्र की जयंती आ रही है। अगर आपको तारीख याद है शैलेंद्र की जयंती की तो आप जरूर बताएं, इसी महीने में है। अब आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम। फिल्म है जिद्दी।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में सुख दुख, खुशी या गम खुद के

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

0: नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है घर पर। साथियों, घर केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं का वो अनंत आकाश है जिसके नीचे जीवन अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रहा होता है। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा भर नहीं, बल्कि स्मृतियों, संबंधों और संवेदनाओं का जीता जागता संसार है। घर वो जगह है जहां मन को सुकून मिलता है, आत्मा को अपनापन और हृदय को प्रेम का स्पर्श मिलता है। देखा जाए तो घर एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें संस्कारों में, तना विश्वास में और शाखाएं रिश्तों में फैली होती हैं।
1: दो दीवाने शहर में।

इस घर की छाया में व्यक्ति जीवन की तपती धूप से राहत पाता है। जब संसार की भाग दौड़ से थका हुआ मन लौटता है तो घर उसे उसी तरह अपने आगोश में समेट लेता है जैसे शाम ढलने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। घर की दीवारें निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं। वो बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सीख, माँ की ममता और पिता के संघर्षों की साक्षी होती हैं। हर कमरा अपने अंदर

शायद यही कारण है कि घर से दूर जाने पर उसकी यादें मन के आकाश में चांदनी की तरह बिखर जाती हैं। घर एक भावना है, एक अनुभव है, एक अनमोल एहसास है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की हर भूमिका से मुक्त होकर केवल स्वयं बन जाते हैं, जहां जीवन की उथल पुथल के बाद मन को शांति मिलती है। अगर जीवन एक कविता मान ली जाए तो घर उसका सबसे मधुर छंद है। जीवन एक संगीत है तो घर उसकी सबसे सुरीली धुन है। ये वो जगह है जहां रिश्तों की सरगम गूंजती है और प्रेम की स्वर लहरियां वातावरण को मधुर बना देती हैं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
2: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
1: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स।
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले

0: प्रावधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
1: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया।
4: इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: तिरु ओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया

0: जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओणसाध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया,

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में

0: कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हमसाया।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी, पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी, कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
2: हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
1: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
2: पुरुष जवाब दे।
1: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
2: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
1: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
2: या फिर अगर कोई महिला, यानी जो अभी युवतियां हैं, वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाएं, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए? ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
1: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए, ये हमारा मुद्दा है। लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
2: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: और शब्द हमारा, विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
2: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल
1: सहज
2: जाती
1: ईर्ष्या है
2: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन,
1: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है, एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले,
2: विकराल रूप ले ले,
1: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे, मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या तो बताएं।
2: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
1: दूसरों के बारे में।
2: उनके क्या विचार हैं या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जैसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन सी, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं पर उसके विधि लिखे ना, तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी मिठाई
1: हो सकता है। इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद ए मिलाद, तो ईद ए मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है। और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी, और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है। और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है, जो हर त्योहार पर की जाती है, और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता, बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा यह पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है।
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये
0: कि
1: कहूं या वो कहूं, इसकी ये खासियत है तो उसकी वो
0: वो
1: खासियत
0: खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलाने जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है।
1: और भरना भी नहीं चाहिए
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है, और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भला किसे नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं
1: हाँ
0: कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे
1: यानी
0: जो
1: ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल की
0: केरल
1: इस
0: की बात करें, तो बताइए क्या खासियत है।
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
1: जीआई टेक के रूप में।
0: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है,
1: यानी
0: और
1: उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है, और राज परिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था, और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
1: और है ना
0: हैं।
1: वो ऑफ वाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के, जो जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और इसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
0: क्या बात है, वो
1: माहौल
0: आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्ति तो लगता है देखकर।
1: जी
0: अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें।
0: ये
1: इसके
0: सही
1: अलावा
0: बात
1: और
0: है।
1: कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में पड़
0: हमारे हाथ
1: जाएंगे।
0: जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
0: जी
1: टिप्पणी,
0: जी जी
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो
0: कितनी अच्छी
1: कितनी
0: दोस्ती।
1: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है।
0: उसकी कोई
1: लोग
0: परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है।
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है,
0: और
1: कोई अच्छा
0: अपना कोई
1: करता।
0: खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी,
1: जी,
0: पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो
1: या
0: अच्छा।
1: फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती
0: हाँ,
1: थी, तब लगता था अरे ये हमारी टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और
1: और
0: हमारा
1: हमारा
0: नहीं
1: नाम
0: लेती
1: नहीं।
0: ये एक सहज ईर्ष्या होती है।
1: हाँ।
0: बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या
1: जी,
0: लिखा
1: एक
0: है।
1: साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: वही तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ों अगर उसे आंगन में, क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा, इसी बहाने साफ सफाई हो
1: साफ सफाई हो
0: जाती है। एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी,
1: और अगर
0: तो
1: हम मेहनत करने लग गए,
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गए। और अगर हम सिर्फ जलते कुड़ते रहे तो वो नकारात्मक
1: बस
0: ही हो
1: घर
0: गई।
1: में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल।
1: तो वो
0: तो
1: नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और
1: और
0: कई
1: व्यंजन
0: बार
1: भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
1: हाँ, कि आपके घर
0: और
1: में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और
1: हाँ,
0: बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी
1: इस
0: है
1: विषय पर बनी है।
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक।
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई सोनाली जी?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है, ममता जी, कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की, मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है, अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम
1: उनके
0: खुद
1: नाम से पहचाने
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें
1: जी।
0: अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई, उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं 2 कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने
1: मैं
0: पति
1: डरती
0: के,
1: है।
0: हाँ, पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने के प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं,
1: जी
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपने सोच की बात है
1: जी
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है, तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं, लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारी एक और, हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
1: पीछे
0: अपने
1: हटने
0: पीछे हट
1: लगते
0: जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
1: जो
0: चली आ
1: चल रहा
0: रही
1: है
0: है।
1: वो अच्छा है।
0: जी
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल। वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप, साबुत या टुकड़े में चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाए, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार कर एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाए, गैस की आँच

0: के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है, तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
1: गाना सुनवा दे,
0: सुनवाते हैं एक बार।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं
1: जी।
2: मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे
1: जी जी
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे। मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरह स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था उन दिनों, बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
2: छुटपन पे ही, मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था
1: बिल्कुल,
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहाँ पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था
1: जी।
2: ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहां पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
2: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुँचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
2: फिर नेपाल है। फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
2: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहाँ तबादला हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को। और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था। जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ, ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने, इस बारे में कुछ बताएं,
2: तो उस समय
1: बात है।
2: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके, तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मीला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छोटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल,
2: तो किताबें दोस्त बन गई और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
2: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे। तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा है एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे कहते चले। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। तो मेरे सर पे ये जो है बीज

0: बो दिया।
1: बो दिया गया
0: और
1: था
0: तब मैं क्लास
1: बिल्कुल।
0: 8th में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, मगर बॉम्बे
1: बॉम्बे
0: ले
1: भेजना
0: जाएगी।
1: चाहता
0: तो
1: है
0: ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला। वहाँ पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नज़रअंदाज ना
1: तो ये
0: करना।
1: नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है
0: मेरा
1: कि
0: हाँ
1: टेलीविजन फिल्म्स उसके
0: जी
1: आगे
0: जी
1: प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है एक
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो
1: जी
0: वो नाटक है। बाकी सब प्रेम प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना है, मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है। वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें, वो मेरा एक
1: सुनवाते हैं
0: पसंदीदा
1: गाना
0: गाना है।
1: हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं जिंदगी

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सर?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है

0: समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
0: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
0: मेरा शहर
1: जी,
0: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
0: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
0: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभले,
0: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलोसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना
1: जी,
0: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल,
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में, लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: तो मैं सबसे अलग,
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा है गाना है फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एसडी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था। वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
1: सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की,
1: जी
0: 80s 90s से आप जुड़े
1: हाँ
0: हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं,
1: जी
0: थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है, वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी जी
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में? या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर
0: सब
1: किसी का
0: पैरेलल
1: स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिमी देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं,
0: जी
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं।
0: जी
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड और ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं। वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं। ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है।
0: जी
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं।
0: जी
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएसीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए,
0: हाँ
1: वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट। तो वहां पे चकाचौंध दिखता है, अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है, और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
0: अपनी अपनी जगह
1: अपनी
0: पर।
1: अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है
0: जी
1: जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आपके अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
0: जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो
1: जी
0: उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड
1: जी
0: हैं।
1: जी जी अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके,
0: अच्छा
1: वो भी म्यूजिकल ही है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है, तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें,
0: जी
1: बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
0: अच्छा
1: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल। जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि
0: जी
1: एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड
0: बिल्कुल
1: में का जो स्ट्रक्चर है उस
0: जी,
1: स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
0: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े हैं। बीबीसी
1: जी
0: के लिए आपने रेडियो
1: जी
0: ड्रामा किया,
1: जी जी
0: कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
1: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है।
0: जी
1: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं, यानी कि सड़क पे करते हैं, तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल
0: बिल्कुल
1: होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं, जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है, तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है, लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: जी
1: तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी
0: बिल्कुल
1: आंखें बोलती थी, अमिताभ

0: बच्चन डायलेक्ट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: हाँ
0: तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। तो सिनेमा में ये है, और रेडियो में पूरा ही वाचन, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब
1: बिल्कुल
0: टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत
1: बिल्कुल यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: है जी। एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है
1: बिल्कुल और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
0: जी।
1: वो सुनने में और मजा आ रहा है हमको।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की. तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक.
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है. मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था. अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में. और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे. मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निहलानी मेरे मन में बैठ गए. उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्ध सत्या, जो करप्शन नफुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी. फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी. उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी. एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए. मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है. तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था. तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निहलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं. तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी. तो उनको जब पता चला मैं अलगाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए. पूछा मेरे नाटकों के बारे में. मैंने जो नाटक किया था विरासत करके नाटक है, वराचिड़ी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पर वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए.
0: अच्छा
1: जी, टीवी फिल्म. तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा. तो मैं अपने फोटो वोटो देके बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया. फिर बात भूल गया मैं, 2-3 साल गुजर गए. फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, इफ विशेस व हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निहलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था.
0: अच्छा.
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने. मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था. तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था. पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निहलानी के ऑफिस से.
0: अच्छा.
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है. तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया. उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवेल है, नॉवेला 1084 की माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी. मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया. अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है. तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, 3 तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था. ऐसे 3 तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ. उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता. उसकी मां जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है. वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती. फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी. मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी. तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है. तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी माँ. तो इसमें मुझे मौका मिला काम करने का. तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला. तो एक तरह से आप कैसे
0: फिर से जिया आपने उसे, उस माहौल को,
1: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है. लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई, महाश्वेता देवी, गोविंद निहलानी, मैं, मेरी को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जन्नाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे हम लोग.

0: हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया
0: और
1: भादुड़ी
0: जया
1: जी
0: जी
1: और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे,
1: जी
0: जया जी जिनकी शुरुआत सती इत्रे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है होश है, वो सुना दीजिए
1: सुनते
0: इसमें
1: हैं गाना।
0: जी।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
1: ऐसा ही
0: उस
1: लगा
0: चीज को
1: मुझे,
0: दिल से चाहो तो।
1: ऐसा ही लग
0: और भी
1: रहा
0: आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है
1: जी
0: आपका।
1: जी जी
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके
1: जी
0: बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर
1: टीवी
0: कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा
1: मैं थिएटर से टीवी में, मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, ओहदा भी होगा
0: बिल्कुल
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा, उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही रहूंगा।
0: अच्छा
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था, कि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी
1: तो मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो।
0: बस एक
1: मैं
0: कलाकार, एक
1: बस,
0: आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है, कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया, तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था। आप
0: अच्छा
1: सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का,
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे।
0: बिल्कुल
1: तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए, मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था, महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना। तो
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया, वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के
0: एक्शन
1: मास्टर्स
0: मूवीज
1: थे।
0: आ रही थी। हाँ बिल्कुल
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म ही कर रहे थे।
0: बिल्कुल
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर
0: ना के
1: था।
0: बराबर था। बिल्कुल
1: सीरियस सिनेमा का दौर mid-80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था। अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था, तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी परदेसी
0: रोमांटिक हीरो
1: उसमें
0: करेंगे
1: जाएंगे,
0: जी।
1: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर, या मुझे जिस तरह से लोगों ने, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है,
0: जी
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे हैं, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में, और वो जो वो आ
0: रजनीगंधा।
1: वो रजनीगंधा, या
0: हाँ
1: सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया।
0: इस तरह के रोल में
1: जी
0: बिलोंग
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं।
1: जी मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं,
1: वो मेरे
0: अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया, कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया, क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था, और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर,
0: बिल्कुल
1: हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे,
0: हाँ
1: आप समझ रहे हो, वो
0: बिल्कुल
1: किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा
0: हाँ
1: बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया 1984 की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन

0: छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता,
1: हाँ
0: ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या? तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा।
1: जी
0: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ, और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे। तो मुझे बुलावा आया तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था। वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने
1: जी
0: लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई, क्यों मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं
1: बिल्कुल
0: जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन
1: बिल्कुल
0: आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग
0: थी।
1: आ रहे हैं
0: जी
1: उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत
0: ओटीटी
1: किरदारों
0: में
1: की
0: तो
1: जगह
0: हाँ
1: है, जो कहीं
0: बिल्कुल,
1: फिल्मों में लिमिटेड था वो
0: नहीं,
1: यहाँ पर
0: ओटीटी में एक
1: अभी।
0: अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं,
1: जी
0: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं। वो
1: बिल्कुल
0: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले ही वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में, मैंने
1: जी
0: एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चला जाता है।
1: जी
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने
1: बिल्कुल
0: सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
1: जी
0: गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में
1: जी
0: जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां
1: जी
0: आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
1: जी
0: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल यहाँ सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
0: जी मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं। बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
1: मंजिल
0: गाना
1: फिल्म
0: है।
1: से
0: हाँ, वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
1: बिल्कुल
0: खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ।
1: जी
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, क्योंकि
1: जी
0: वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है,
1: जी
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं,
1: जी
0: पसंद किए गए हैं।
1: जी जी
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना, जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था।
0: जी
1: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग, हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहाँ पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो
0: जी
1: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की की, 2012, 18, बी मूवी करके की, और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है
0: जी
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था।
0: जी
1: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, वैसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी, तो उन्होंने मुझे चुना, तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा। मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी
0: बिल्कुल, तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग
1: जी
0: इंडस्ट्री,
1: जी
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे हैं बहुत, ठीक है,
0: अच्छा
1: तो वो भी अभी
0: अच्छा
1: करने को मौका मिल गया है।
0: जी
1: वो वर्टिकल्स जो हैं वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताए जाते हैं,
0: हाँ हाँ
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है। तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा,
1: जी
0: बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए
1: जी
0: बहुत अच्छे लगे,
1: जी
0: और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके
1: जी
0: लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते
1: थैंक
0: हैं,
1: यू,
0: और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध
1: आपका
0: भारती
1: भी
0: के
1: बहुत बहुत
0: स्टूडियो
1: शुक्रिया।
0: में आने का।
1: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

सड़क किनारे खड़े होकर की गई बातचीत ही काफी होती है। बातें भी कैसी, कभी भविष्य के सपने, कभी बीती हुई शरारतें और कभी ऐसी हंसी जिसका कोई खास कारण ही नहीं होता। इन पलों में मोबाइल की स्क्रीन पीछे छूट जाती है और सामने होते हैं अपने लोग, और यही छोटी छोटी मुलाकातें जीवन की भाग दौड़ के बीच मन को सुकून देती हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम लेते ही हमारे मन में सेवा, करुणा और मानवता की भावना उभर जाती है। उनका जीवन इस बात की मिसाल रहा कि किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा होना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। दोस्तों, 1928 में वो भारत आईं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों, अनाथों और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1950 में उन्होंने कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके सेवा कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली और साल 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मदर टेरेसा जी का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कई बार किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, किसी बुजुर्ग की मदद कर देना और किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करना या फिर किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना भी सेवा का ही रूप है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के पास ऊर्जा, समय और नई सोच है। अगर युवा अपनी क्षमता का थोड़ा सा हिस्सा समाज के लिए लगा दे तो बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, वे स्वच्छता अभियान, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों में स्वयं सेवक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, मदर टेरेसा जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सेवा को केवल एक अवसर या सिर्फ एक अभियान न माने बल्कि अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि इस बात से भी होती है कि उसने दूसरों के लिए क्या कुछ किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी 5 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि से जोड़ा है, और यही कारण है दोस्तों कि उनकी जयंती हमें करुणा, सेवा और मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देती है।

0: दोस्तों, वातावरण स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हर वर्ग के लोगों की यह आवश्यकता भी है और जरूरत भी, और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी। तो चलिए, इसी संदर्भ में हम वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है स्वच्छ वातावरण। वार्ताकार हैं प्रिया पांडे।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया पांडे है और मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वच्छ वातावरण हमारी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हर कोई स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में रहना पसंद करता है और हमेशा स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण का सपना भी देखता है। तो दोस्तों, बहुत कम लोग स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए कोई भी कदम उठाने का प्रयास करते हैं, भले ही नागरिकों, एजेंसियों और गैर सरकारी लोगों को यह सुनिश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे। लेकिन दोस्तों, स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाए रखने के लिए उसका समर्थन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है और स्वस्थ रहने तथा लंबी उम्र जीने में मदद मिलता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो इसके परिणाम बहुत भयानक है, जैसे बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, इन समस्याओं को कम करने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है जिससे हमारे पर्यावरण स्वच्छ और हरे भरे हो सके। हमारी पृथ्वी पर हमारे साथ साथ कई जीव जंतु रहते हैं। हमारी जीवित पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन तरीके हैं, जो अंततः संबंधित शहरों और पूरे देश में नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। तो देखिए, हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। सड़क पर या अपने आसपास गंदगी न फैलाएं। गंदगी फैलाने से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, जो हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं और उसके साथ साथ हमें स्वच्छ भी रखने का कार्य करते हैं। हमारे पर्यावरण को साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें ताजी हवा मिलती है और प्रदूषण मुक्त होती है। यह अशुद्ध वातावरण समाज की स्थिति को खराब कर देती है, जैसे बीमारियों के आगमन और कई अन्य संबंधित समस्याओं का कारण बनता है। पर्यावरण को साफ रखने के लिए एवं जीवन को अपनाने के लिए उसका समर्थन करना बहुत ही आवश्यक है। समाज में हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन, दवाइयाँ आदि निर्माण सामग्री मिलती हैं। बच्चों को अपने आसपास के समाज के बारे में जागरूकता का ज्ञान देना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी समाज के वास्तविक मूल्य को संरक्षित करते हैं। और हम सभी मनुष्यों का यह एहसास बढ़ रहा है कि हवा, पानी, मिट्टी और भोजन की गुणवत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे एलर्जी, श्वसन रोग और कैंसर एवं शरीर के हार्मोन्स का विकास और समय से पहले मृत्यु हो जाती है। स्वच्छता का अर्थ अपने आसपास की जगह को गंदगी से मुक्त रखना और खुद को साफ सुथरा रखना है। लेकिन सिर्फ अपने घर की और खुद की सफाई स्वच्छता नहीं होता है, बल्कि स्वच्छता का मतलब हमारे घर के आस पड़ोस में भी मौजूद गंदगी, जैसे धूल, मिट्टी, खुला कचरा, जमा हुआ गंदा पानी, गड्ढे, इन सब से भी मुक्त होना जरूरी है। अगर हमारे चारों तरफ सफाई बनी रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपका मन साफ हो तो आप तब भी स्वच्छ माने जाएंगे। इंसानों के लिए मन की सफाई आसपास की सफाई जितना ही महत्वपूर्ण होता है। स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छता अभियान का पालन करते हैं। ऐसे ही कुछ स्वच्छता की आदत का पालन बड़ों के साथ साथ बच्चे भी करते हैं, ताकि वह कई तरीके की बीमारियों से बच सकें। सदियों से किए गए वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि वातावरण प्रदूषण अपने चरम सीमा पर आ गया है। हवा में मौजूद प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ वयस्कों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद प्रदूषण की उच्च मात्रा के कारण हमारे श्वसन अंग, हमारी दृष्टि और हमारी सुनने की क्षमता क्षतिग्रस्त हो जाती है। काफी जनसंख्या में लोगों को अस्थमा, अन्य श्वसन संबंधित समस्याएं या शरीर के अन्य अंगों में परेशानी जैसी समस्याएं होती हैं। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हमें कई तरीके अपनाने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि हर घर से कचरा निकलता है, इसलिए हमें कचरे को हर जगह फेंकने से बचना चाहिए। कचरा हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, खासकर प्लास्टिक की थैलियाँ। हमें प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कागज या जूट की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाकर हरित वातावरण बनाए रखना चाहिए। चूंकि हम समाज में रहते हैं और हम पर्यावरण का एक हिस्सा हैं, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा कैसे रखें? अधिक पेड़ लगाना और हरित क्षेत्र में पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाना। हर प्रकार के कचरे के उचित निपटान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। वाहनों से निकलने वाली गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगानी चाहिए तथा पर्यावरण के अनुकूल ईंधन विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक जैसी सभी गैर सामग्रियों को प्रचलन से हटा देना चाहिए। वनों की कटाई पर रोक लग जाना चाहिए और वन रोपण के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए। लोगों को स्वच्छ और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत जरूरत है। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत व आसपास की भी सफाई करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को जिम्मेदारी के साथ साथ साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ वातावरण और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकें। जरूरत है कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं और देश के सच्चे नागरिक का मिसाल कायम करें। धन्यवाद।
0: दोस्तों अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था स्वच्छ वातावरण। वार्ताकार थी प्रिया पांडे।
2: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
3: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों आज के समय में करियर चुनना युवाओं के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पहले करियर के विकल्प सीमित माने जाते थे, लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है। पढ़ाई, तकनीक और नए व्यवसायों के बढ़ते अवसरों ने युवाओं के सामने कई रास्ते खोल दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। अक्सर बच्चे अपने दोस्तों को देखकर या समाज में किसी क्षेत्र की लोकप्रियता देखकर करियर का फैसला कर लेते हैं। किसी को लगता है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा पैसा है वही सबसे अच्छा होगा। कोई परिवार या रिश्तेदार के दबाव में अपनी पसंद को छोड़ देता है, लेकिन लंबे समय तक किसी काम को करने के लिए केवल पैसा या फिर दूसरों की पसंद काफी नहीं होती है। अपनी रुचि और अपनी क्षमता को समझना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों अगर किसी युवा को लिखने में रुचि है, वह लेखन, पत्रकारिता, कॉपीराइटिंग या कंटेंट से जुड़े क्षेत्रों के बारे में सोच सकता है, तो उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जिसे तकनीक पसंद है वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। किसी को खेल, कला, संगीत या सामाजिक सेवा में रुचि हो सकती है। तो हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो अपना अपना महत्व है और अपनी रुचि के साथ ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल रुचि देखकर ही फैसला किया जाए। रुचि के साथ साथ अपनी योग्यता, मेहनत करने की क्षमता, पढ़ाई की जरूरत, रोजगार के अवसर और भविष्य की संभावनाओं को भी समझना होगा। किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से बात करना भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, माता पिता और शिक्षकों को भी युवाओं की रुचि समझकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। सलाह जरूरी है लेकिन फैसला थोपना बिल्कुल नहीं चाहिए। वहीं युवाओं को भी अपनी पसंद के साथ जिम्मेदारी और वास्तविक परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, सही करियर वही है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सके, लगातार सीख सके और अपने काम से संतुष्टि महसूस करे। इसीलिए करियर चुनते समय खुद से एक सवाल जरूर पूछें, मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी। दोस्तों, यही सवाल सही दिशा की शुरुआत बन सकता है।

0: दोस्तों, आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह आँख खुलते ही खबरें, संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट हमारे सामने आने लगते हैं। किसी घटना की जानकारी कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। यह सुविधा अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी हमारे सामने है, फेक न्यूज यानी कि झूठी और भ्रामक खबरों का तेजी के साथ फैलना। कई बार हमारे पास कोई संदेश आता है और हम उसे पढ़ते ही बिना जांचे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी परिचित ने भेजा है तो यह खबर बिल्कुल 100% सही ही होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक गलत संदेश कुछ ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है और भ्रम उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आज के डिजिटल दौर में तथ्य जांच हमारी जरूरी आदत बननी चाहिए। कोई खबर पढ़ते ही सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह खबर आई कहां से है आखिर। क्या उसे किसी भरोसेमंद समाचार माध्यम ने भी प्रकाशित किया है? क्या किसी सरकारी या आधिकारिक स्रोत ने इसकी पुष्टि की है? खबर की तारीख और संदर्भ भी आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर पुरानी तस्वीरों और वीडियो को नई घटनाओं के साथ जोड़कर वायरल कर दिया जाता है। कई बार किसी बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है हमारे सामने। इसीलिए केवल आकर्षक शीर्षक देखकर किसी खबर पर विश्वास बिल्कुल ना करें। पूरी जानकारी पढ़ें और उसके स्रोत की पुष्टि, उसकी जांच जरूर करें। दोस्तों, युवाओं की जिम्मेदारी इसमें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वे सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। हमें एक आसान नियम याद रखना चाहिए, पहले जांचें, फिर साझा करें। अगर किसी खबर के सही होने पर संदेह है तो उसे आगे भेजने से बेहतर है कि वहीं पर उसे आपके द्वारा रोक दिया जाए। फेक न्यूज से लड़ने के लिए किसी विशेष विशेषज्ञ के होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी, धैर्य और सवाल पूछने की आदत आपकी होनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में जागरूक नागरिक वही है जो हर जानकारी को तुरंत सच नहीं मानता, बल्कि उसे परखता है। और हमारी एक छोटी सी सावधानी समाज को बड़े भ्रम से बचा सकती है।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो अच्छी आदतें अपनाएंगे, जैसे कि अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी, वही तय करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम युवावाणी से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रानी राजश्री को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों बाल संघ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दीदी अनीता और आप सब प्यारे प्यारे बच्चे। बच्चों सबसे पहले आप सब ये बताइए कि आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों ये बताइए कि जब कोई त्योहार आता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई क्यों नहीं अच्छा लगेगा, एक तो स्कूल की छुट्टी रहती है, फिर एक दिन घर में रहने का मौका भी मिलता है, और ऊपर से बच्चों के मनपसंद त्योहार हो तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। आप सब खूब इंजॉय करते हैं और आपको इंतजार भी रहता है त्योहारों का। तो बताइए बच्चों इस समय अब कौन सा त्योहार आने वाला है? रक्षाबंधन, एक बच्चे ने बताया। जी हाँ बच्चों रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। इस त्योहार में क्या होता है आप सब जानते हैं? जानते हैं ना बच्चों? खुश होकर हंस रहे हैं, लगता है आप सबको पता है, आप सही सोच रहे हैं। बच्चों ये भाई बहन का त्योहार है। इस त्योहार में बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनको तिलक लगाकर उनकी आरती करती हैं और फिर मिठाई खिलाती हैं। तो बच्चे तो मिठाई भी खूब खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। तो हमारे जो बच्चे भाई हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहन उनसे कितना प्यार करती है, कितना सम्मान देती है और रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधती है। बहनें जब भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो इसलिए बांधती हैं कि हमारे भाई की हर तरह से रक्षा हो सके और वो सुरक्षित रहे। और फिर भाई को मिठाई खिलाती हैं और भाई भी अपनी बहनों को तोहफे या गिफ्ट देते हैं। इससे बच्चे भी खुश होते हैं और बहनें जो बचपन में तो भाई भाई बहन बच्चे ही होते हैं, तो बहनें भी खुश होती हैं और भाई भी खुश होते हैं कि मुझे मेरे भाई ने कितना अच्छा तोहफा दिया। आजकल तो भाई बहन से पूछ भी लेते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, या बहनें भी भाई से अपने मन पसंद गिफ्ट पहले से ही डिमांड कर देती हैं कि भाई मुझे तो रक्षाबंधन पे ये चाहिए, तब मैं राखी बांधूंगी। वैसे बच्चों में सबसे बड़ा है प्यार, मान सम्मान और प्रेम का रिश्ता। गिफ्ट सामान कपड़े गहने तो सिर्फ खुश होने के लिए, खुश करने के लिए दिया जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चों भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है, अनोखा होता है। हर भाई के दिल में बहन के लिए प्यार होता है। हर बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती है और गर्व महसूस करती है। भाई को भी रक्षाबंधन का बहुत इंतजार रहता है। राखी के दिन भाई अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। बच्चों इस बहाने रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बहुत इंजॉय करते हैं। पूरी पकवान मिठाइयाँ खाई जाती हैं। बच्चे तो राखी बंधवा कर खूब घूम घूम कर अपनी राखी दिखाते हैं। क्यों बच्चों, मैं सही कह रही हूँ ना? और बहनें भी सज धज कर खूब इंजॉय करती हैं, घूमती हैं। बहनों रक्षाबंधन का बच्चों बहन रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर खुश होकर घूमती है। और बच्चों इतिहास में भी हिंदू पुराण कथाओं में भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय में रक्षाबंधन का पता चलता है। उनकी कथा के अनुसार राजा बलि ने यज्ञ संपन्न करके स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण का रूप बनाकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि से भगवान विष्णु 3 पग भूमि मांगे। राजा बलि ने अपने गुरु के मना करने के बाद भी 3 पग जमीन दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश पाताल और धरती नापकर सब कुछ ले लिया। तब राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना किया कि वो हर समय उनके सामने रहें। माता लक्ष्मी जी को इस बात की चिंता हो गई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपना भाई बना लिया और बदले में वो भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और आज के समय में भी हम श्रावण की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों इसके अलावा इतिहास में भी राखी के महत्व के बारे में हमें पता चलता है। मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर अपने रक्षा की प्रार्थना की थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और महारानी कर्मवती की रक्षा की। तो बच्चों इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता रहा है और हम सब आज भी इस त्यौहार को बड़े खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों त्यौहार की बात तो हो गई, रक्षाबंधन की बात तो हमने कर ली, आइए अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाए। तो बच्चों आज हम पढ़ाई लिखाई यानी इसी विषय पर एक भेंटवार्ता लाए हैं जिसका विषय है बच्चे मात्राएं कैसे सीखें, और भेंटवार्ताकार हैं श्री विजय शंकर उपाध्याय जी, सेवानिवृत्त शिक्षक रेणुकूट, और उनसे बातचीत की है साजिदा बेगम ने।
2: बच्चों आज हम बातचीत करेंगे विजय शंकर उपाध्याय जी से, जो तो रेणुकूट स्कूल में शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। विजय शंकर उपाध्याय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो देखिए सर जी, आज हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, और बच्चे भी देखिए हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हिंदी में कमजोर हो जाते हैं, मात्राएं सही नहीं लिखते हैं, उच्चारण सही नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि बच्चे कैसे मात्राएं सीखें।
3: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
2: जी।
3: प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक आसपास के परिवेश से संबंधित उदाहरणों को यथा स्थान प्रस्तुत करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक गुरु माता पिता होते हैं। खेल खेल में मात्रा उन बच्चों को सिखाया जा सकता है, खेल खेल में मात्रा उनको बतलाया जा सकता है। जिस तरह से हम छोटे छोटे बच्चों को मात्रा आसानी से उनके दिमाग में डाल सकते हैं
2: जी, तो ये आलेख और सुलेख की प्रैक्टिस बच्चे किस तरह से करें जिससे वे सही सही और सुंदर अक्षरों में लिख सकें।
3: आलेख को सरल भाषा में श्रुति लेख कहा जाता है, श्रुति लेख कहा जाता है, अर्थात सुनकर लिखने को ही आलेख कहा जाता है और सुनकर लिखने को ही श्रुति लेख कहा जाता है। आवश्यकता है बोलने वाले की कला पर, आवश्यकता है बोलने वाले की उच्चारण कितना स्पष्ट एवं सही है, आवश्यकता है बोलने वाले के ऊपर वह जितना सही बोलेगा उतना ही बच्चा सही एवं शुद्ध लिख सकता है। जहाँ तक सुलेख की बात है, सुलेख में सरल भाषा में है सु माने सुंदर और लेख माने लिखावट, अर्थात सुंदर लिखावट को ही सुलेख कहते हैं। बच्चों को प्रतिदिन एक ही पैराग्राफ लिखवाने, उसका प्रत्येक अक्षर अनुपात में होना चाहिए, यह देखना टीचर से ज्यादा हर माता पिता या यूं कहे कि अभिभावक का कर्तव्य होना चाहिए। प्रतिलेख हम बात बात में बच्चों को घर पे एक लाइन ही बोले, दो लाइन ही बोले, एक पैराग्राफ ही बोले, लेकिन बोलने की कला जो होनी चाहिए वो स्पष्ट और सही होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से बच्चा श्रुतिलेख अर्थात आलेख लिख सकता है। और सुलेख डेली अगर प्रैक्टिस करे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि प्रैक्टिस के आगे बच्चा पिछड़ जाए
2: जी,
3: अर्थात वो सही लिखना शुरू कर देगा
2: जी। जी यानी कि टीचरों के साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को होमवर्क के साथ साथ सुलेख भी लिखवाने की कोशिश करनी चाहिए।
3: केवल विद्यालय में और केवल शिक्षकों के ऊपर, शिक्षिकाओं के ऊपर जो माता पिता छोड़ देते हैं वही बच्चा देखा गया है कि कमजोर होते हैं।
2: जी जी सर, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चे छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, या फिर छोटे ऊ की मात्रा की जगह बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो बच्चे इन गलतियों को कैसे सुधारें?
3: इस पर हम बोलने के पहले थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेंगे
2: जी।
3: इस दूसरे की बात को समझने और समझाने का जो साधन होता है वह भाषा कहलाता है
2: जी।
3: और भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आज हम लोग केवल मौखिक पर यहाँ थोड़ा बात करने जा रहे हैं। मात्राएं ओ को छोड़कर सभी स्वर के कुछ कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं।
2: जी।
3: अब हम छोटी ई जहाँ तक सवाल है या बड़ी ई की जहाँ तक सवाल है
2: जी,
3: तो हम बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि जिस मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण जल्दी बोला जाता है उसमें छोटी ई की ही मात्रा लगाई जाती है। जैसे हिरण, अब किला, इसमें क्या है, हमने अपने उच्चारण में हिरण में ह में जब छोटी ई की मात्रा लगाया तो इस पर मैंने जोर देकर के नहीं बोला चिड़िया, तो बहुत आसान तरीके से और अपना उच्चारण मैंने जो बोला वो थोड़ा जल्दी बोला, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगनी है। तो जब हम बच्चों को श्रुतिलेख या सुलेख लिखवाते हैं तो निश्चित तौर से इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अपने मुंह से जो उच्चारण निकले इसी तरह का उच्चारण निकले कि बच्चा केवल मेरे उच्चारण को सुन करके मात्रा सही लगा सके। जिस शब्दों का उच्चारण पर जोर दिया जाता है जैसे बड़ी चीज है, बोलने पर हम जोर दे करके बोलते हैं, जहाँ जोर देकर बोलेंगे वहाँ बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे हाथी, तो हाथी मैंने थ में बड़ी की मात्रा लग गई, तीर तो तीर में बड़ी की मात्रा लग गई, मछली तो ल में बड़ी की मात्रा लग गई। इस तरह से जोर दे करके बोलने वाले पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। इसी तरह से शीघ्र बोलने वाले शब्दों में, जहाँ तक छोटा ऊ का सवाल है, जोर देकर के शीघ्र बोलने वाले शब्दों में छोटा ऊ लगता है, जैसे पुल, जैसे बुलबुल, जैसे गुड़िया इत्यादि। और जोर देकर बोलने वाले शब्दों में बड़ा ऊ लगता है, जैसे झूला, फूल, सूरज। तो ऑटोमेटिक बच्चे को अगर इस तरह की बात समझा करके शुरू में ही हम उनको बताएं तो निश्चित तौर से बच्चा जो है मात्रा सही सही लिखना शुरू कर देगा।
2: जी जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और उस पे अगर बच्चे ध्यान देंगे तो अपनी मात्राओं को सही तरीके से लगाएंगे भी। और इसी तरह से देखिए, अक्सर बच्चे बोलचाल में या फिर पढ़ने में शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है?
3: बार बार प्रैक्टिस करने से सही सही भाषा का प्रयोग टीचर एवं घर के सदस्यों को भी करना चाहिए। अगर हम खुद गलत बोले तो निश्चित तौर से बच्चा गलत बोलेगा।
2: जी।
3: वाक्यों पर हमें ध्यान देना होगा।
2: जी।
3: चाहे गार्जियन हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या अध्यापक भी क्यों न हो।
2: जी।
3: देखा गया है कि वो वाक्यों पर उस तरह का ध्यान नहीं देते हैं जिस तरह से बच्चे का मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे क्या चीज खोजते हैं। वाक्यों को धीरे धीरे पढ़ना या बच्चों को पढ़वाना, समझना, ये हमें प्रैक्टिस के माध्यम से ही बच्चों के ऊपर इस चीज का बोझ डालना चाहिए। हम जितना उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे उनके अंदर उच्चारण संबंधित सुधार होता रहे।
2: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बताया। और देखिए सर, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे तो मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, उनको जैसा आकार दिया जाएगा और जैसा परिवेश दिया जाएगा, जो कुछ सिखाया जाएगा, बच्चे उसको बहुत जल्दी से सीख लेते हैं।
3: हाँ जी।
2: तो आज आपसे बातचीत हुई कि बच्चे सही उच्चारण कैसे सीखें, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और बच्चे भी इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो आपने बातचीत की, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: बच्चों, इस संदेश से पहले अभी आपने भेंट वार्ता सुना, जिसका विषय था बच्चे मात्राएं कैसे सीखें, और भेंट वार्ताकार थे श्री विजय शंकर उपाध्याय जी, सेवानिवृत्त शिक्षक रेणुकूट, और उनसे बातचीत की थी साजदा बेगम ने। बच्चों, आइए अब कुछ आगे बातें करते हैं। बच्चों, आपको पता है आज कौन सा त्यौहार है? आज है ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार, जो कि इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस की खुशी में मनाया जाता है। आज के इस मुबारक दिन पर हजरत मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए थे। लोगों का विश्वास है कि उनका जन्म पूरी मानवता यानी सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की एक बड़ी रहमत और मार्गदर्शन था। इस दिन लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन, उनके अच्छे स्वभाव, शांति, दया और उनकी दी गई शिक्षाओं को याद करते हैं। बच्चों, ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने और पैगंबर साहब के प्रति अपना प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही कई देशों और क्षेत्रों में पैगंबर यानी मोहम्मद साहब की शान में नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण जुलूस भी निकालते हैं। इस दिन मस्जिदों और घरों में विशेष सभाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें पैगंबर साहब के जीवन, उनके उपदेशों और चरित्र पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा बच्चों, पैगंबर साहब की प्रशंसा में सुंदर कविताएं और नाते पढ़ी जाती हैं। बच्चों, इस दिन दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। इसके अलावा कुरान पाक पढ़ा जाता है और घर में बरकत और सुकून के लिए दुआ की जाती है। इस दिन बेसहारों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं और खुशियां मनाएं।

बच्चों, ये तो हो गई त्योहारों की बातें, आइए अब दोस्ती के बारे में बातें करते हैं। बच्चों, आप सभी का कोई ना कोई दोस्त तो जरूर होगा। हर बच्चा कोई ना कोई दोस्त जरूर बनाता है और बिना दोस्त के तो बच्चे रह ही नहीं सकते। दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ बातें करना तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। और आप दोस्त भी बनाते हैं उसे जिसे आप पसंद करते हैं, जिनके साथ खेलते होंगे। बच्चों, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपका साथ दे, सही राह दिखाए, आपकी मदद करें और आपके माता पिता का भी सम्मान करें और साथ साथ पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बातें करें। और अगर आपका होमवर्क अधूरा है तो वो आपका होमवर्क पूरा करने में आपकी मदद करें। बच्चों, आप जब भी नया दोस्त बनाएं अपने माता पिता को जरूर बताएं और अपने माता पिता से कहें कि आप उनके माता पिता से मिलें। इस तरह जब दोनों के माता पिता आपस में प्रेम से मिलते हैं तो आपकी दोस्ती भी मजबूत होती है और आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे और रिश्तों में भी प्रेम बढ़ेगा। और दो परिवार जब एक साथ मिलते हैं तो दोस्ती भी गहरी होती जाती है। बच्चों, लंबे समय तक दोस्ती भी चलती है और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ता है। जब पारिवारिक संबंध बनते हैं तो और भी विश्वास बढ़ जाता है और बच्चों के अंदर भी सामाजिक विकास होता है। बच्चों, देखिए, बच्चों की दोस्ती में अभिभावकों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही मार्गदर्शन से बच्चे अच्छे दोस्त चुन पाते हैं और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना सीख जाते हैं। इसके लिए माता पिता को सकारात्मक माहौल बनाकर रखना चाहिए। बच्चे माता पिता को देखकर सीखते हैं और माता पिता को उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। घर का माहौल भी खुशहाल रखें। सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान कराएं और बताएं कि अच्छे दोस्त वो हैं जो मदद करते हैं, आदर करते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। साथ ही बच्चों को कहें कि वो कभी किसी दोस्त के दबाव में आकर गलत काम ना करें और वो अपने दोस्त को घर पर बुलाएं जिससे माता पिता को उनके व्यवहार के बारे में पता चल सके। बच्चे से रोज बात करें, जैसे कि वो स्कूल में गया तो वहाँ पे क्या हुआ, खेल के मैदान में क्या हुआ। बच्चों के बदलाव पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कभी उदास रहता है तो कभी बात करता है, कभी हंसता है, तो इस तरह से उसके व्यवहार अगर बदलें तो इसका कारण जानें। इसके अलावा सोशल मीडिया या डिजिटल दोस्ती पर भी ध्यान दें। बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो ऑनलाइन गेम तो नहीं खेल रहे हैं,

इसके अलावा अभिभावक बच्चों को ये सिखाएं कि किसी अजनबी व्यक्ति से कोई जानकारी शेयर न करें, साथ ही इंटरनेट पर किसी को परेशान करने या होने से बचाएं। साथ ही अभिभावक भी अपने दोस्तों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, क्योंकि बच्चे माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमने बातें तो बहुत कर ली, आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बच्चों देखिए गीत तो बहुत अच्छा था, आप सबको भी अच्छा लगा होगा। बच्चों अब ये बताइए कि आपको पेड़ पौधे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं? मुझे भी सुंदर लगते हैं। बच्चों आपके घर में भी पेड़ पौधे जरूर होंगे और आपको जरूर अच्छा लगता होगा। आपको भी उनकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। अगर वो सूख रहे हैं तो आप उन्हें पानी जरूर दीजिए और पौधों के आसपास जमा गंदगी को साफ करें, वहाँ के घास निकालें। बच्चों घर छोटा हो या बड़ा, हम सबको हरियाली के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। उन पर धूप लगने चाहिए। अगर धूप नहीं लग रहा है तो धूप कोशिश करें कि उन पर धूप आए, और सूखे पत्तों को उनके पास से हटा दें। जो पत्ते सूख के गिरे हुए हैं उन्हें हटा कर वहाँ की सफाई करें। समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करें और महीने में एक बार पेड़ पौधों में गोबर की खाद डालें। बच्चों पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। ये हमें शुद्ध हवा, फल फूल और जीवन जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो इसलिए हमें उनकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। तो बच्चों इन्हीं बातों के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। तो अगले कार्यक्रम में हम सब फिर साथ होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संग। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि शाम के 6 बजे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से प्रदेशव्यापी लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति निःशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारंभ कैले। ये योजना के जरिया से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वसन में अब 60 साल आओ से बेसी उम्र का प्रदेश का महिला लोग निःशुल्क यात्रा कई सकेलेन। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले,
1: 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरे। इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में प्रारंभ की जा रही है, ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय की ये सुविधा सुरक्षा से सम्मान, सम्मान से स्वावलंबन और स्वावलंबन से ओ नेतृत्व का जत्रा हो, जहां हर बेटी बहन माता आत्मनिर्भर महसूस करें। ये मौका पर वहां के घोषणा कर ली कि स्नातक में पढ़े वाले 50,000

0: बेटियन के राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दिहल जाए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, लखनऊ का महापौर सुषमा खरकबाल और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल के साथ ही कई गो जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बुजुर्ग महिला लोगन बदे निःशुल्क बस यात्रा योजना के शुभारंभ के मौका पर प्रदेश के सज्जो जिला में कार्यक्रम आयोजित कई गई। प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के मौका पर महिला लोगन बदे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बसन और सिटी बसन में निःशुल्क यात्रा का घोषणा कैले हवे। ये घोषणा के मुताबिक सज्जो उमिर का महिला लोग बिहाने भिन नहीं 6 बजे से 29 अगस्त के आधी रात ले बसन में निःशुल्क यात्रा कर सकेलिन। उनके साथ ही एगो सहयोगियों बदे निःशुल्क यात्रा का अनुमति दी हल गई हौ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में आज लखनऊ में विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित यूपी एग्रीज परियोजना के तहत समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कैल गई। समझौता ज्ञापन यूपी डास्प के साथे गूगल और नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी आईटीसी आ एक्वा ब्रिज के बीच भई। ये मौका पर ज्ञापन के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का 21 और बुंदेलखंड का 7 जिला में किसानन के आय में बढ़ोतरी बदे खास कार्यक्रम चलावल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से खेलो इंडिया संवाद के संबोधित करी हैं। ई खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण के एगो साझा मंच दे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के तहत मेरा युवा भारत की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम में हर जिला के 2 कॉलेजन के जोड़ल गई हौ। ये कॉलेजन में मौजूद विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल जरिया से संवाद से जुड़ी हैं। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसड़ से विद्यार्थी खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा ली हैं। गृहमंत्री अमित शाह अगला 1 वर्ष में 3 नया आपराधिक कानून देश भर में पुरहर तरीका से लागू करने का लक्ष्य रख लिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में वहां के कहले कि 2047 ले विकसित भारत का लक्ष्य पावे बदे मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी बा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इस्लाम धर्म का पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनावल जा रहा हो। ये मौका पर पूरा प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन हो रहा हो। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के सज्जो जिला में आज ईद ए मिलाद उन नबी के लेके मुसलमान लोगों में खास उछाह बा। कई जिलन में जुलूस ए मोहम्मदी के लेके कड़ेर सुरक्षा इंतजाम के साथ ही यातायात व्यवस्था में ढेरे बदलाव कैल गई बा। नेपाल के भोटे कोशी नदी में आयल भयंकर बाढ़ के देखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमा से सटल महाराजगंज और कुशीनगर जिला में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई हौ। कुशीनगर जिला में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के अनिशा के देखत राज्य आपदा मोचन बल का टीम तैनात कई दिया गई हौ। ओहर मौसम विभाग प्रदेश के कई गो पूर्वीय और पश्चिमी जिला में बिहने भारी बरखा का चेतावनी दिया हवे। समाचार पूरा भई, नमस्कार।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कानून की बात। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर।

0: विक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और हमारे आज के कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब। हम और हमारा स्वास्थ्य, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। श्रोताओं फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर और रात्रि 8:15 पर। सबरस, ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:45 पर और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम सुगम संगीत हम आपको सुनाएंगे रात्रि 8 और रात्रि 8:30 पर और रसधारा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10। श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार नीलू पत्नी विजय कुमार निवासी ग्राम मानपुर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, ये दिनांक 16/6/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया सांवला रंग, लंबा चेहरा, इखरा बदन, पहनावा पीले रंग की साड़ी और पैर में चप्पल। श्रोताओं एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवानी केन पुत्री स्वर्गीय हरि किशन केन निवासी 8/395 लोनी गेट छोटा बाजार शाहदरा दिल्ली जो मुर्धवा खाड़पाथर सोनभद्र से दिनांक 26/5/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 28 वर्ष, लंबाई 147 सेंटीमीटर, हुलिया गेहुआ रंग, गोल चेहरा, मजबूत जिस्म, दोहरी बदन, पहनावा गुलाबी रंग का सूट। इन दोनों के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम, राम। भौजी तो के राम राम हो, कह सुनाओ का हाल चाल है।
1: मने भी आपके भी राम राम, सब बढ़िया बा। आप सुनावे का हाल समाचार बा।
0: अरे भौजी हमार तो हाल एकदम बढ़िया बा। जब तू सामने रहा तो तोहके देख कर एकदम मन अपने आप प्रसन्न हो जाला।
1: अब मुने भैया देखे रानी के देख के आपके जन्म तब से हम मुस्की थमते नहीं बा। और अब हमार नाम लगावत हैं, भौजी के नाम लगावत हैं।
0: देखे भौजिए के देख के जौन मन बा ना वो प्रसन्न होला। ऐसन पवित्र रिश्ता बा कि एकर माने व्याख्या शब्दन के माध्यम से नहीं कर जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो आपके इतना ज्यादा धन्यवाद देना ये बात के लिए कि होला ना, जैसे कुछ लोग भौजाई देवर ननद रिश्ता इतना बढ़िया प्यारा बनावल गए अपने देश में अपने गाँव समाज में, लेकिन आपके मुंह से भौजी सुन के मन एकदम गदगद हो जाला।
0: बिल्कुल मने गदगद हो के चाहिए, हमरो मन प्रसन्न होला भौजी। लेकिन ये प्रसन्नता का राज ईवा कि अगर हम लोगन थोड़ा सा मने निरोगी रहब, रोग से रहित रहब, तो अपन मन बहुत प्रसन्न रही। कहे से कि देखे आजकल बरसात का मौसम बा, समझ लें कि अगर अशुद्ध जल का सेवन हम लोग करत है तो कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य पर एकदम उल्टा प्रभाव डाली। जोन अपन तबियत बा वो खराब हो जाये या प्रसन्नता अपने आप छीन जाये।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कहल जा रहा ना मुनि भैया की धन गईले धन कमा सकत है मनई, लेकिन जो है अगर स्वास्थ्य चल गए तो सब चल गए।
0: बिल्कुल।
1: तो स्वस्थ रहल बहुत जरूरी है। आज जैसे आप चेतौला है कि इस समय बारिश का मौसम बा, रह रहा के बरसात होत बा, तो पानी आप लोग जो पियत है ओकर ज्यादा ख्याल करके रखें। काहे कि अगर अशुद्ध जल पी है तो तमाम तरह के बड़ बीमारी हो, देर ना लगे, काहे को बैक्टीरिया पनप जाना, कीटाणु जीवाणु हो जाना। आप ओके उबाले छाने ठंडा करके फिर पिए तो ऐसे आपका पेट से जो पेट जनित रोग होला उससे बचाव हो, उल्टी दस्त हैजा कालरा तमाम तरह पेचिस तमाम तरह की जो परेशानी हुई आप उसे बच सकी हैं।
0: बिल्कुल। जल जनित जो रोग बा उनसे बचाव बदे शुद्ध पानी का सेवन हम लोगों के करे के चाहिए। देखें अगर उबाल नहीं सका तीघन का व्यवस्था नहीं तो अपने पंच भैया लोगन से हम यह निहोरा करब कि भैया हो एक बाल्टी में या ड्रम में कोनो चीज में पानी ले लें, थोड़ा सा फिटकिरी
1: घुमा दे
0: वही में घुमा दे तो जवन उनमें गंदगी बा
1: नीचे बैठ
0: अपने आप नीचे बैठ जाई और वो पानी का अगर सेवन करिया तो निश्चित बा कि जवन अपने पंच भैया लोगन का स्वास्थ्य बा वो अच्छा रही, वो कोनो भी नुकसान अपने शरीर के न पहुंचाई। देखें पानी अपने शरीर बदे बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: पानी अगर शरीर में बा तब भी हम लोगन स्वस्थ भी बाई। कहे से कि देखें कहल जाला अपन पंच भैया लोग भी कहन कि जोन अपन पृथ्वी बा ना एमे तीन भाग पानी है एक भाग मिट्टी है, तो पानी ये पृथ्वी बदे भी आवश्यक बा अपने शरीर बदे भी आवश्यक बा। कहे से कि देखें पांच तत्वों से अपन शरीर जौन बा एकर निर्माण भल बा, जल छित पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा। तो पांच तत्व से अगर अपन शरीर बनल बा तो उनमें जल भी बा, जल बहुत महत्वपूर्ण बा, जल का सदुपयोग भी हम लोगों के करे के चाहिए। ओके जगह जगह गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में ओके रोके के भी चाहिए। लेकिन देखें आज एक बड़ी अच्छी जानकारी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में शामिल कर ले ही भौजी, डायरिया के लक्षण कारण और बचाव डॉक्टर संजय कुमार सिंह भैया जो होमियो चिकित्सक हम इनसे पुरानी बातचीत बामुन्ना भैया का ये सुनल जाये। और आज देखे बुधवार का दिन है और अब हम लोगन अपने पंचायत में भी हेलो किसान लेकर आई। आज के दिन बुधवार के दिन अपन पंच भैया लोगन का जो समस्या रही खेती किसानी से संबंधित ओकर समाधान अपन विशेषज्ञ भैया लोग करी है। तो देखें खरीफ फसलन में पोषक तत्व प्रबंधन आज का विशेषज्ञ हम हेलो किसान का डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब
1: जो
0: विषय वस्तु विशेषज्ञ हम कृषि विभाग मिर्जापुर का इन्ही से दूरभाष पर बातचीत आज हुई, संपर्क हुई इनसे। एक साथ साथ आज का बाजार भाव भी हम लोग शामिल करब अपने कार्यक्रम में। देखें सावन का महीना वही चलते है, लेकिन सावन का महीना तो बटले बा, लेकिन अपने यहाँ जो कजरी का परंपरा बा भौजी वो पचैया से लेकर 30 तक चला लाए।
1: और हम तो कहते हैं कि कहल एक कहानी है ना कि सावन से भादो दूबर नाही, तो कजरी का है सावन में भर भादो भर भी सुनल जाये, सुनवावल जाये, गावल जाये और झूलवा झूलल जाये।
0: बिल्कुल सही बात कहते हैं। तो आज एक कजरी हुई राजेंद्र पांडे और उनका संघाती लोगन का। हम तो कहता है कि पहले डायरिया लक्षण कारण और बचाव का उपाय का बा, डॉक्टर संजय कुमार सिंह भैया जो होम्योपैथिक चिकित्सक हो, इनसे मुन्ना भैया का पुरानी बातचीत बा सुन लो।
2: श्रोताओं, बरसात के मौसम में पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, और जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि पानी की वजह से इस समय कई तरह के रोग फैले हुए हैं। ऐसे में एक डायरिया भी है जिसको कि हम समय समय पर अपने आसपास देखते हैं और खुद कभी कभी उसकी शिकार भी हो जाते हैं।
3: तो डायरिया के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह।
2: और आपसे हम लोग जानेंगे कि ये कैसे फैलता है और इसके लिए हम कौन कौन से एहतियाती उपाय कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब,

0: सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में स्वागत है। हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे सर कि डायरिया ये कैसे फैलता है और इसके लिए हम कौन कौन से एहतियाती उपाय कर सकते हैं।
1: देखिए, डायरिया एक शब्द अपने आप में जो है बहुत ही कहते हैं ना कि कठिनाई भरा शब्द है ये जो है
0: जी।
1: और डायरिया का इस समय माहौल भी चल रहा है, ये जो वातावरण में परिवर्तन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: जो बरसात के समय जो गंदे नालियों से निकलने वाले पानी जो हमारे पीने वाले कुओं को हैंडपाइप के पानी को जो प्रदूषित कर दे रहे हैं
0: जी।
1: तो दस्त या डायरिया जो भी कहिए दोनों एक ही शब्द है, चाहे हम उसको दस्त कहें या डायरिया कहें। इसका मूल कारण जो है जो देखा जाता है वो दूषित पानी पीने से होता है।
0: अच्छा।
1: और दूषित पानी पीने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि दूषित पानी का मतलब कि बस पानी पी लिया फिर हो गया, क्योंकि तो पानी में विभिन्न तरह के जीवाणु और परजीवी दोनों होते हैं। तो जब दूषित पानी हम पीते हैं और उसमें जीवाणु और विषाणु इस तरह के जो रहते हैं, तो पहला कारण तो ये हो जाता है कि हम गंदा पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। दूसरा ये होता है कि पेट में जब संक्रमण होता है तो संक्रमण के कारण जो है दूषित पानी पीने से जब पेट में संक्रमण होता है तो वह चाहे रोटा वायरस हो, एक रोटा वायरस होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या यदि जीवाणु में आप जाएंगे तो सार्मोनेला और एक जो है ईकोलाई, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके कारण भी हमारे जो है डायरिया का जो कारक बनता है, जो हमारे आंतों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के जो संक्रमण है वो देखा जाए तो गंदा पानी दूषित पानी पीने से मुख्यतः होता है ये जो है।
0: जी जी। और इस समय थोड़ा बरसात के मौसम में जो पेयजल की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं रहती है और कई तरह के जो विषाणु और जो परजीवी हैं वो पानी में मिले रहते हैं और ऐसा वातावरण भी रहता है, ऐसा इस समय का समय होता है कि जिसमें उनको पनपने का मौका मिल जाता है। तो सर चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब तो ये हो गया कि गंदा पानी पीने से जो है ये समस्या आती है, तो सर इसमें कौन कौन सी ऐसी परेशानी दिखाई देती है, कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि हम समझें कि स्थिति जो है ठीक नहीं है।
1: देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लक्षण जो आपने कहा ना कैसे कौन से ऐसे लक्षण है जिनसे हम ये समझ पाए कि हम डायरिया से ग्रसित हैं
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डायरिया में क्या होता है, जो हमारा मल होता है तो मल कम होता है, पानी की मात्रा शरीर से ज्यादा निकलती है
0: जी।
1: और इतना ज्यादा पानी, जैसे कहते हैं ना कि दिन भर में 3 से 4 बार यदि आप लैट्रिन जा रहे हैं, आपको जो है बार बार जो है बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो 4 बार आप गए और पानी की तरह निकल रहा है, मल कम निकल रहा है, पानी ज्यादा निकल रहा है
0: जी।
1: तो हमारे शरीर की जो संरचना है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि शरीर के वातावरण या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर से आंतों से जब हम पानी निकलने लगा, तो जब पानी निकलेगा शरीर से तो क्या होगा, जब पानी निकलने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि किडनी हमारा क्या काम करता है, गुर्दा हमारा क्या काम करता है, गुर्दा ही करता है ना, पानी को छानता है, अपचित पदार्थों को पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। यदि शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगी और अधिक पानी निकलने लगा तो सबसे पहले तो हमारे जो है गुर्दे को किडनी को प्रभावित करता है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे पेशाब यदि गहरा पीला होने लगेगा, क्योंकि पानी अब कम है शरीर में
0: जी,
1: तो पेशाब पीला होने लगेगा। और जैसे इसको ये कहिए कि गहरा पीला पेशाब होगा, कम पेशाब होगा, मितली होगी, उल्टी का एहसास होगा, सिर दर्द होगा, जब पानी निकलता है शरीर से तो हमारी त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है
0: जी,
1: जैसे कहते हैं ना कि रूखी त्वचा हो जाती है। पानी जब कम होगा तो चक्कर आना, जब चक्कर आएगा तो चिड़चिड़ापन होगा, और जब पानी की शरीर में कमी होगी तो मुंह सूखना, थकान और धसी हुई आंखें और गाल। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जब शरीर से पानी निकलने लगता है तो हमारी आंखें जो है ना, जैसे कहते हैं उसकी इंग्लिश में कहते हैं सनकेन आई, आंख धस जाती है, तो है गाल पिचक जाता है, जो है कहने के लिए कि शरीर के पूरे सिस्टम प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो हृदय हो, चाहे वह आंत हो, चाहे वह लीवर हो, चाहे वह गुर्दा हो, सारे सिस्टम प्रभावित हो जाते हैं पानी की कमी से। तो डायरिया में बहुत ही हमें सावधानी की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि 4 बार लैट्रिन हुआ और पानी निकल गया तो उसको हम बहुत हल्के मिले, हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जितनी बार हम लैट्रिन जाते हैं और पानी निकलता है तो हमें उतनी ही पानी की भरपाई किसी न किसी रूप में आपको करना है
0: जी। जी। तो सर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो डॉक्टर साहब से मिलने से पहले हम कुछ एहतियाती उपाय कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये है कि आप यदि डायरिया के शिकार हो गए तो आपका खान पान कैसा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पेट आपका गड़बड़ है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, पानी शरीर से बाहर निकल रहा है, तो हमें उसकी भरपाई करनी होगी। अब भरपाई करने में क्या है कि हमको उबला हुआ पानी, शुद्ध उबला हुआ पानी हमें पीना है, और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करना है। भोजन कैसा करना है, जैसे कि आप दाल का पानी हो गया, माड़ का पानी हो गया, जैसे चावल हम बना रहे हैं,

0: चावल में जैसे हल्का सा नमक डाल दिया और उसका माड़ जैसे लिक्विड हम लेंगे, क्योंकि शरीर में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, कहते हैं ना कि नमक की मात्रा कम होने लगती है सोडियम और पोटेशियम की। जब सोडियम पोटेशियम की मात्रा कम होने लगेगी तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होगा, शरीर के सारे अवयव प्रभावित होने लगेंगे। तो ऐसे में हमें क्या है कि हमें जो है बराबर जो है बासी खाना से हमें परहेज करना है, ताजा खाना खाना है, सड़े कटे हमें फल और जो है फल से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना, जो कटे जो खुले हुए बाजार में नहीं ओपन करके बेचते हैं लोग, जैसे कि मक्खियां या गंदगी होती है, उससे हमें परहेज करना है। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि जिसको डायरिया हो या न हो, बराबर आपको हाथ धोते रहना है, क्योंकि गंदे हाथ से भी हम किसी चीज को खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे आंतों को, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है और डायरिया का कारण बन जाता है।
1: जी जी जी, ये तो बड़ा ही अच्छा आपने सलाह दिया, और खास करके छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वे जब भी खाना खाएं उससे पहले हाथ को अच्छे ढंग से धो करके ही खाएं। सर, अपना इलाका ग्रामीण जो इलाका है खास करके, उसी को देखते हुए सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो सर हमारे जो गांव में रहने वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वे लोग तो पहले अपना जिन जिन बातों को आपने बताया उस पर ध्यान रखें, और इसके साथ साथ सर जो ORS का जो घोल होता है सर, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप कुछ जानकारी दे दें।
0: देखिए, यदि आपके शरीर से पैखाने के रास्ते से पानी जा रहा है, दस्त हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इसे हल्के में ना लें। इसके इलाज के लिए आप समुचित व्यवस्था करिए। जब तक आप चिकित्सक के पास नहीं पहुंचते हैं, तो आप जब घर पे हैं तो आप जितनी बार, जैसे 3 से 4 बार यदि लैट्रिन जाते हैं, पतला पैखाना होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम, जैसे 15 साल से ऊपर का व्यक्ति है, तो एक दिन में 4 गिलास कम से कम पानी जो है नमक नींबू चीनी का घोल बना करके लें, 4 गिलास से कम ना हो। यदि वो 5 से 15 साल का बच्चा है तो 2 से 3 गिलास, और कहने का मतलब 400 ml, और यदि 2 साल का बच्चा है तो कम से कम 200 ml, मतलब 1 गिलास हमें पानी जो है उसे ORS का देना है। अब ORS देखिए बाजार में भी मिलता है बना बनाया, लेकिन आपके घर में ORS नहीं है कोई बात नहीं, आप नमक 1 लीटर पानी में हल्का सा 1 चुटकी नमक लेंगे और थोड़ा सा चीनी लेंगे और सबको मिला करके आप एक तरह से ORS घोल बना लें और उसे धीरे धीरे धीरे धीरे करके पूरे 1 दिन में 1 लीटर आपको पीना है। इसके साथ में एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे नारियल का पानी हुआ, छाछ हुआ, दही हुआ, या पुदीने का चाय हुआ, मतलब इस तरह का आप जो सेवन करेंगे, लेकिन आपने कहा कि अपने जनपद जो हमारा दुरूह है, जो भौगोलिक एरिया है, यहाँ की जो दुरूहता है, यहाँ पे जो है देखिए तो नदी भी है, नाले भी है, और चलते फिरते नाले भी है, जो कि गंदगी भरे जब विधा बरसात होता है तो पानी उसमें आता है, और जाहिर सी बात है कि तालाब को प्रभावित करता है, कहीं कहीं कुआं है, कुआं भी प्रभावित होता है, कहीं कहीं हैंडपाइप है, हैंडपाइप प्रभावित होता है। तो मैं अपने जनपदवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि विशेष कर देखिए, हम लोग सरकार पे बार बार ध्यान देते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही, यदि जो पानी पीने वाला जो कुआं है उसमें ब्लीचिंग पाउडर जरूर डालें, हम क्लोरीन की गोली जो है स्वास्थ्य विभाग से या शासन से जहां से हमें मिल रहा है वहां से क्लोरीन की गोली लेकर के हम पानी में डाल करके उसका सेवन करें। कहने का मतलब कि जो प्रदूषित जो कुएं हैं, जो प्रदूषित हैंडपाइप है, वहां हम मार्किंग कर दें यह प्रदूषित है, और गांव के सभी लोग प्रधान के साथ मिल करके, क्योंकि यह हित का मामला है, तो हम उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर, कुएं की सफाई और हैंडपाइप में जो है जो पानी प्रदूषित है वहां पे भी हम उचित व्यवस्था करके जो है शुद्ध और साफ पानी पीने के लिए लोगों को प्रेरित करें। और ये नदी नाले तालाबों में जो है गंदे तालाबों में नहाने से, पीने से, बर्तन धोने से लोगों को मना करेंगे कि आप वहां बर्तन मत धोइए, वहां पे मुंह मत धोइए, वहां पे आप जो है उन पानी से अपने आप को बचाइए।
1: जी जी, तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ थे वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, और आपने बताया कि गंदे पानी को पीने से बचें और अपने आसपास साफ सफाई बना करके रखें, पैनिक ना हो, अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपने नजदीक के जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क करें और समुचित इसका इलाज करें जिससे आप स्वस्थ हो सकें, निरोग रह सकें। तो सर, आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: भौजी, देखें कितना बढ़िया जानकारी हम लोगों ने सुन ली, डायरिया के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय। डॉक्टर संजय कुमार सिंह भैया रहना है, होम्योपैथिक चिकित्सक हम, इनसे मुन्ना भैया को बातचीत रहा है। अब तो बिना देर कहले हम कहता ही कि पहले हम लोगन एक मन मनसान कराई का डॉक्टर साहब के दही जा धन्यवाद राजेंद्र पांडे और उनका संघाती लोगन एक कजरी सुनाओ था। सुन लो,

0: भौजी
1: हाँ
0: देखें कितना बढ़िया राजेंद्र पांडे और उनकर संघाती लोगन हम लोगन के मन मनसान करौलेन कजरी के माध्यम से, इन्हों के धन्यवाद बा। लेकिन देखें हम लोगन खेती बाड़ी से अगर जुड़ल है तो हम लोगन के ई चाही कि प्राकृतिक तरीके से अपने फसलन के हम लोगन सुरक्षित रखें और एकरे बदे देखें जीवामृत जौन बा हम लोगन बनाए सकीला। जीवामृत सूक्ष्म जीवाणुमन का महासागर है जौन की पेड़ पौधा बदे कच्चे माने कच्चा पोषक तत्वन के पकाए का उनके बदे भोजन तैयार कराला। एकरे बदे अगर हम लोगन जीवामृत बनावल चाहत है तो जैसे 1 किलो गुड़ ले लही ओमे 5 से 10 लीटर गोमूत्र माने मिलाए दही आई गोमूत्र देसी गाय का रही तो बहुत अधिक फायदेमंद हुई। गोबर 10 किलो ले लही, दलहन का आटा यानी बेसन 1 किलोग्राम ले लही, एकरे साथे साथे 1 मुट्ठी जीवाण युक्त मिट्टी ले लही,
1: जैसे बरगद का, पीपल के नीचे का मिट्टी
0: हाँ,
1: या मेड़ के नीचे का मिट्टी
0: हाँ,

0: लगभग 100 ग्राम रहा है भौजी,
1: हाँ, 2 मुट्ठी के आसपास।
0: एक ड्रम में मिलाई का ड्रम के जूट के बोरी से ढक दही जा, हम लोग ना छाया में रखी जा, और सुबह शाम लकड़ी से घड़ी के सुई के दिशा में माने घुमाई जा। अब 72 घंटा बाद छान का 7 दिन के अंदर एकर हम लोगन प्रयोग कर सकीला, तो देखें अपने फसलन बदे ये बहुत ही अच्छा है और जैविक तरीका रही। लेकिन देखें अपने कार्यक्रम में आज से जौन एक नया पहल हम लोगन फिर शुरू कैले भाई जा अपने पंचायती में,
1: बिल्कुल
0: हेलो किसान, तो हम तो कहते हैं कि देखें संपर्क होता डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया से,
1: हाँ?
0: जौन की विषय वस्तु विशेषज्ञ हम कृषि विभाग मिर्जापुर में, तो संपर्क करी जा।
1: बिल्कुल
0: पंच भैया लोग देखें अपने पंचायती में हम लोग प्रत्येक बुधवार के हेलो किसान कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो आप लोगन बदे, और आप लोगन का जौन भी उसे संबंधित समस्या हुई ओकर समाधान अपन विशेषज्ञ भैया लोग करिए, और एकर रिकॉर्डिंग हम लोगन प्रत्येक रविवार के 4:30 से 5 के बीच में करब। आप लोगन 4:30 से 5 के बीच में फोन कई कर निश्चित ही जौन भी आप लोगन का समस्या हुई ओकरे बारे में पूछी हैं, तब विशेषज्ञ भैया लोग ओकर समाधान करिए। देखें आज हमार जौन संपर्क बा उ हो गल बा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब से, आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हम, और आज आपसे ही हम लोगन जानब अपने कार्यक्रम के जौन खरीफ फसल बा इस समय अपने खेत में, तो उनमें पोषक तत्व प्रबंधन हम लोगन कैसे करी। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, आज आपका अपने पंचायती में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावे कि जवन अपन किसान भाई लोग खरीफ में खेती बाड़ी से जुड़ल हम, और खरीफ के फसल का बुआई कैले हम, तो अपन पोषक तत्व प्रबंधन जवन अपन पंच भैया लोग हम वो कैसे करें।
2: सबसे पहले भैया हम अपने सब किसान भैया लोगों के राम राम बोलो। जो खरीफ का फसल का बाटे है, तो खरीफ का फसल का चूंकि हम लोग के बुआई हो चुकल बाटे
0: जी,
2: और जो हमने खास करके जो फसल लगाव जाएला इमन अपन धान का फसल हो गल, तिलहन में अपन तिल वगैरह हो गल
0: जी जी,
2: और दलहन में हमने लंबी अवधि बदे के अरहर या कम अवधि के करे अलावा हमने लगावा जाएला मूंग लगावा जाएला और उर्दी वगैरह लगाएला, और जो अपन सब्जी के बाट है ओकर सब्जी के खेती करत जाएला। तो चूंकि चाहे जो भी हमने खेती करत जाए सब खेती में या जो हमने के पूरा जो पौधा बाट है सब पौधन में 17 प्रकार के जो होला पोषक तत्व जो होला 17 पोषक तत्व जो होला वो हमने के पौधा के चाहला ओकरे वनस्पति बढ़ाव बदे के ओकरे फलत बदे के और उमन रोग व्याधि ना लगे एकरे बदे चाहला
0: जी जी।
2: तो हमारे जब किसान भैया लोग जब भी खेती करे चालू करते हैं चाहे जेकर हो चाहे फसल उत्पादन बदे के हो चाहे सब्जी उत्पादन बदे के, तो सर्वप्रथम अपने खेत के मिट्टी के जांच करा ले और अपने खेत के मिट्टी के जांच के आधार पे जान ले कि कोने कोने पोषक तत्व का कमी हो, तो ओकरे अनुसार अपने खेत में पोषक तत्व का प्रबंधन करे। क्योंकि यस में अब समय निकल चुकल है तो अब हमारे किसान भाई लोग काका कर सकलन अब उपे हमने चर्चा करत जाई और तो वो हमने अनुसार थोड़ा सा बेहतर रही।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जब धान का रोपाई हो गई बा, फसल का बुआई हो चुकल बा, बढ़वार फसल में अपन चलता, तो ऐसने स्थिति में कौने कौने कौन कौन ऐसन पोषक तत्व वाया जौने के प्रबंधन का जरूरत ये समय खास तौर से पड़ल है।
2: देखम भैया अगर हमने बात कर जाए तो हमने जो होला प्राइमरी जो होला या जो हमने बोले जाएला कि हमने के भाषा में प्राथमिक जो पोषक तत्व होला उमन आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है
0: जी जी।
2: अब इमन बात करें जो हमने के जो नाइट्रोजन होला नाइट्रोजन उमन अगर धान में बात करें तो 120 केजी प्रति 4 बीघा के हिसाब से नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेला, और जो की हमने लेला यूरिया से आपका
0: जी जी
2: और डाई से मिला ला। तब देखा एमन नहीं करल जाला कि जो 120 किलो है ओके कई भाग में बांट ले, पहले जब हमने जब धान कर जब पलेवा करके जो इसमें लगावट जाते है तो आधा वहां पे डाल दे डोज, आधा का अर्थ हो गया आपका 60 किलो
0: जी जी
2: नाइट्रोजन का। जैसे अगर आपका 60 किलो अगर यूरिया चाहता तो 2.17 से जब गुणा कर देंगे तो जो हमने का मात्रा जो है वो निकल जाएगी आपका कितना यूरिया देवक हो। क्योंकि हमने अपने पोषक तत्व प्रबंध

0: बंधन में ही हमने के पौधे के चाहला आपका डाई भी चाहला।
1: जी
0: तो डाई का अर्थ हो फास्फोरस से, तो फास्फोरस भी आपका 60 kg पर हेक्टेयर चाहला। ओकर जब डाई डली है तो डाई में चूंकि एक होला आपका नत्रजन के भी मात्रा उपलब्ध होला जो आपका लगभग 18% होला।
1: जी जी
0: चूंकि जितना डली है तो मन 18% के हिसाब से आपका नत्रजन जाई, तब उतना मात्रा घटाव के बाद में आप यूरिया के तौर पे ओकर गणना करी है।
1: बिल्कुल
0: और एक और जो सबसे अमुक पोषक तत्व के बात करें जो पोटास कोला, चूंकि ये समय जो होता हो हम लोग का जो वर्षा हो बड़ा असमय में हो था, सूखा भी हमेशा बनत रहता हो,
1: जी जी
0: तो वो वाली अवस्था में पोटास एक बहुत अच्छा पोषक तत्व है जो उनकी पौध के आपके सूखा के प्रति जो होला सहनशीलता भी उत्पन्न करेला पौधा में, और आपका जो रोग होला रोग से भी लड़े का क्षमता प्रदान करेला।
1: जी
0: ये
1: जी
0: भी आपका मात्रा 60 kg प्रति हेक्टेयर पे के चाहला। तो ये आपका मिलला म्यूरोटेप पोटास से जो उन्हें 60% पाव लाला। तब एक अनुसार जितना उनके खाद का मात्रा चाहत हो, क्योंकि 100 किलो जब पोटास देंगे आप म्यूरोटेप पोटास तो 60 किलो मिली,
1: जी जी
0: तब यही के अनुसार अपन जो गणना करके जो आपके जो पोषक तत्व होके जब खेत में डली है तब जाके ये आपके जो है पौध का अच्छा बढ़ाव हुई। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: धान का बात करते हैं तो धान में आपका मन अपने जब क्षेत्र में जस्ता का कमी है
1: जी
0: तो
1: जी
0: जस्ता जिंक का, तो उससे का होला अपने फसल में खैरा रोग भी लगला। तो एमन बोले आपका 2.5 kg जिंक प्रति
1: जी
0: हेक्टेयर, तो यही आपका जिंक सल्फेट के तौर पर जाना जाना, तो वो आपका लगभग 25 kg प्रति आपका हेक्टेयर आपका जिंक सल्फेट के रूप में डालना पड़ी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो सूक्ष्म पोषक तत्व बाया,
0: जी
1: वो सूक्ष्म पोषक तत्व का भी प्रबंधन खरीफ के फसल में करे होला?
0: जी अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो देखा आपका जब हमने के चाहे फसल हो चाहे खाद्यान्न फसल हो चाहे हमने के सब्जी वाला फसल हो, तो एक समस्या वाला
1: जी
0: जैसे देखी है कि आपका फल नहीं लगत हो, फूल नहीं आता या फूल आवत हो तो झर जात हो, ई सब और उकरे बाद में आपको जैसे फल लगत हो फल गिर जाता हो या फल में आपका क्रैकिंग आवा चालू हो जाता हो फटा चालू हो जाता हो,
1: जी
0: तो एकर आपका सीधा संबंध होला आपके ये जमीन में बोरान जो हो ओकर कमी हो, जो उनके पूरा ही पौध के अच्छा क्वालिटी का जो होला आपका
1: जी
0: फूल लियाओ और फली बनाओ और उमन दाना वगैरह फड़े में एक आपका योगदान आवला
1: जी जी
0: पॉलिनेशन वगैरह में, तो एकर भी आपके लगभग आपके 1 से 1.5% के एक घोल बनाई के आप एकर अगर छिड़काव करी है तो ऐसे भी अपने जो पौध के हो जो आपको बुरान के जो कमी हो वो भी आपका पूरा हो जाए।
1: डॉक्टर साहब, देखें एक फोन भी आई गल बा अपने पंचायती में, हेलो किसान कार्यक्रम में। भैया आप कहाँ से बोलत हो, अपन नाम बतावा है?
2: नमस्ते भैया, हम बोधाडी से बोल रहे हैं, जगत नारायण यादव।
1: अरे भैया, आपका अपने पंचायती में बहुत बहुत स्वागत बा। आज
2: जी
1: अपने
2: जी
1: हेलो
2: भैया,
1: किसान कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब जुड़ल हवा, ता और बात हो था खरीफ फसलन में पोषक तत्व प्रबंधन का, ता अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: जी, तो कुछ मोटा अनाज चूंकि हम बोए हैं, डॉक्टर साहब से बात हो रही है का?
1: जी जी
0: जी जी भैया, नमस्कार।
2: जी जी नमस्ते सर, नमस्ते। ये दुद्धी तहसील के बोधाडी गांव से हम बोल रहे हैं सर।
0: जी जी
2: वो अपने यहाँ मोटा अनाज की खेती ज्यादा होती है, खासकर मकई हो गया है और कुछ समा कोदो मेड़ो मिजरी भी होता है, लेकिन मकई की बात है तो इसमें सर पीलापन थोड़ा उसमें आ गया है मकई में।
0: अच्छा भैया, सबसे पहले हम आपको थोड़ा से अपने मोटा शब्दों के लिए यहाँ पे मना करेंगे। आप इन फसलों के लिए मोटा शब्द न करके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक शब्द दिया गया है, श्री अन्न फसल।
2: जी जी जी,
0: तो
2: जी, जी।
0: आपसे यही निवेदन है कि अब आप जब भी बोलेंगे इसको श्री अन्न फसलों की हम खेती करते हैं तो ये
2: जी, जी, जी,
0: हम लोग के लिए एक सम्मान की बात होगी। और आपका ये प्रश्न था कि आपका जो मकई है, मकई में आपका जो पौधा है वो पीला पड़ रहा है।
2: जी जी
0: जी जी, तो भैया ये बताएंगे आपके जो नए पत्ती पीले पड़ रहे हैं या पुराने पत्ते?
2: उसमें कुछ जगहों पर जो पहले से सड़े गले पदार्थ थे कुछ जो है कि खाद वगैरह,
0: जी
2: वहाँ
0: जी
2: पर के मक्के तो काले हैं लेकिन बीच के खेत के जो है वो पीले पीले हैं, जो बढ़वार भी थोड़ा कम हुआ है
0: जी जी
2: और
0: वनस्पतिक
2: पीलापन
0: बढ़वार
2: भी है
0: भी
2: नीचे से
0: कम
2: लेकर
0: हुआ
2: ऊपर
0: है
2: तक। जी
0: और पीलापन भी आपका आ रहा है। तो भैया हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आप अपने खेत पे जाएंगे तो
2: जी
0: एक बार ये देख के आप वो कर लीजिएगा, अगर आपकी पुरानी पत्ती जो है अगर वो पीली पड़ रही है तब आपके खेत में जो है नत्रजन की कमी है,
2: जी
0: और अगर नई पत्ती अगर आपकी पीली पड़ रही है तो ये जान लीजिए कि आपके खेत में सल्फर की कमी है। ठीक है,
2: जी
0: क्योंकि
2: जी
0: ये जो दोनों पोषक तत्व है हमारे पौध के लिए नितांत आवश्यक है। और
2: जी
0: साथ ही साथ अपने खेत में क्या कुछ ऐसी पत्तियां भी आ रही हैं जो सफेद एकदम होती हुई जा रही हैं?
2: नहीं, सफेद तो नहीं हो रहे हैं सर, पीले पन के हो
0: अच्छा,
2: रहे हैं।
0: आपने अपने खेत में जिंक वगैरह का प्रयोग किया हुआ था?
2: नहीं, केवल कुछ ऐसे गोबर खाद जो भी थे वही डाले गए
0: अच्छा
2: सर।
0: अच्छा तो भैया आपसे निवेदन यही रहेगा, जब अगली साल आप अपने खेत में मकई बोने जाएंगे तो उससे पहले अपने खेत की एक बार मिट्टी की जांच करा लें
2: जी
0: आप। और दूसरा, अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो जो आपका जो मक्के में जो आपका मात्रा दिया जाता है पोषक तत्व का उसका प्रयोग करेंगे, और जो आप जो गोबर की खाद की जो प्रयोग कर रहे हैं
2: जी
0: उसका प्रयोग आप उसमें करेंगे, और जब गोबर की खाद के जब प्रयोग करेंगे तो आप अपने उसमें एक
2: जी
0: आता है आपका जिप्सम आता है, तो
2: जी
0: जिप्सम मिला के अगर उसमें जब अपने खेत में जब प्रयोग करेंगे तो आपका दो फायदा होगा उसमें। एक तो
2: जी
0: होगा आपका जो मिट्टी जो है वो हो जाएगा आपका भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा उसमें एक और आएगा कि उसमें आपका सल्फर मिलता है जो पौध में आपका बढ़ाव के लिए लाभदायक होता है। और
2: जी जी जी
0: अभी जो है आप जब ये मक्का जब बो रहे थे क्या आपने उसमें जो नाइट्रोजन है वो डाला हुआ था, यूरिया वगैरह
2: नहीं डाले थे सर।
0: नहीं डाला हुआ था? तो अभी एक आप एक काम करिए, कितने आपका बीघे में है मक्का?
2: करीब 1 बीघा से थोड़ा कम है।
0: 1 बीघे से कम है, तो लगभग आप 1 बीघे से कम है, आप 20 किलो के आसपास में यूरिया का एक बार उसमें आप छिड़काव कर दीजिए,
2: जी जी जी जी
0: और अगली बार जब बोएंगे तो आप अपने उस वाले खेत में जो आप गोबर की खाद डाल रहे हैं गोबर के खाद के साथ में आप जो नत्रजन है और
2: जी
0: फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग करेंगे, मतलब आप डाई का भी प्रयोग करेंगे यूरिया का भी करेंगे और पोटास का भी प्रयोग करेंगे, और जो अपना जो ये होता है मक्का होता है उसमें मक्का में आपका जो पोटेशियम का अच्छा खासा अमाउंट वो लेता है, तो पोटेशियम का जरूर आप उसमें वो करिएगा प्रयोग करिएगा।
2: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जगत नारायण भी आया आज दुधी ब्लॉक के बोधा डीह से, आप अपने पंचायती में जौन हेलो किसान कार्यक्रम बाय में फोन कैलेन, जौन आपको समस्या रहा ओकर समाधान भल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब चलत चलावत जौन अपन पंच भैया लोग बाया उनसे का कहल चाहिए अपने हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से?
0: हम अपने सब किसान भैया लोगों से एक ही चीज का निवेदन करब कि जब खेती हो अपन बिना पशुपालन के अधूरा हो,
1: जी,
0: और ओकरे बदे के कम से कम एक गाय का जरूर पालन करें जिससे ओकर जो दूध बाटे अपने खाए बदे के और ओकरे अलावा जो भी पदार्थ उसे निकलत हो चाहे ओकर आपका मूत्र निकलत हो चाहे गोबर निकलत हो उसे नाना प्रकार का जो आइटम हो आप ओके तैयार करके जैसे आप बीजामृत हो गल जीवामृत हो गल ये सब बना के या उससे जो ओके गोबर सड़ा के अपने खेत में जरूर प्रयोग करें जैसे आपन भी सेहत अच्छा रहे और अपने मिट्टी का भी सेहत अच्छा रहे।
1: बिल्कुल, डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब आज आपसे अपने पंचायती में जौन अपन हेलो किसान कार्यक्रम बा एकरे तहत संपर्क भल, और जौन भी अपन किसान भैया लोग रना हा उनकर जौन प्रश्न रहल हा ओकर समुचित समाधान भी भयल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। भौजी
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर पंकज कुमार मिश्र भैया के जौन आपसे फोनिंग वार्ता भइल है। और हम तो कहते हैं कि आज के जो बाजार भाव बा मधुपुर का पूर्णवासी चौहान भैया भइले हम तो आप कहे तो हम बताए दें।
1: बिल्कुल,
3: सफेद आलू है 1000 रुपया, लाल आलू है 1200 रुपया कुंतल, प्याज है 3800 रुपया कुंतल, लहसुन है 10000 रुपया, टमाटर है 3200 रुपया, बोड़ा है 3000 रुपया, कोहड़ा है 1700 रुपया सब कुंतल में है मुने भैया, और अरुई है 2800 रुपया, बंडा है 3000, लंबा बैगन 1200, गोल बैगन 2200, परवल है 5000, लौकी है 1200, करेला है 3000, भिंडी है 1300, नेनुआ है 2000, कुद्रुन है 1500, तरोई है 2500, और मूली है 2000 रुपया कुंतल, धनिया है 8000, मिर्च है 2200, पालक है 2000, अदरक है 10000, सूरन है 4000, देसी खेक्सा है 15000, खीरा है 2200, मकई है 1200, पपीता है 2000, गाजर है 3000, शिमला मिर्च है 6000, चुकंदर है 2800, करौंदा है 4000, फूल गोभी है 3200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2800 रुपया सैकड़ा, नींबू 200 रुपया सैकड़ा।
1: ये देखें मधुपुर सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव रहल है। भौजी हो पूर्णवासी भैया के देवल जाए धन्यवाद। हाँ। कितना बढ़िया पाती उनकर लगल।
3: हाँ।
1: जो की अपने पंचायती का थाती रहल है, अपन किसान भैया लोगन के पंच भैया लोगन के हम लोग बतौली। एक चीज कहल चाहत रही है भौजी अपने पंच भैया लोगन से कि भैया हो देखें ये समय टीकाकरण का अभियान चला था, खास तौर से माने खसरा वगैरह का टीका लगाता अपने जनपद में चिकित्सा विभाग के तरफ से, तो जौन भी अपन पंच भैया लोग बाया वो एप पर जरूर ध्यान दें कि जहां भी टीका लगाता जौन गांव का आशा बहन भाई एनम बहन भाई उनसे संपर्क करें और संपर्क कई का लड़कन बालन के जौन टीकाकरण होता वो टीकाकरण अभियान में एक दूसरे का सहयोग करें और अपने बचवा लोगन के स्वस्थ बनावाए और आपन जौन आर्थिक आमदनी बा के मजबूत करें। तो देखें अब धीरे धीरे अपने पंचायती का जौन समय बा वो भी हो गल, हम लोगन के अब अपने पंच भैया लोगन से विदा लेवे के चाहिए, चले के चाहिए। अगली पंचायती में फिर अपने पंच भैया लोगन से मुलाकात हुई, बात हुई, तो चले के तो सब पंचन के राम राम, राम।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बागी से मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाज में। कुमार के बोल हैं और संगीत है मीत ब्रदर्स का।

अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रदर्स और मनाली ठाकुर को फिल्म बागी में। कुमार के बोल थे और संगीत दिया था मीत ब्रदर्स ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये दिल लगी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू को। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते फिल्म दहक से हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में। इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

दहक। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और हरिहरन को। इस गीत को संगीत दिया था आनंद बिलिंद ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

0: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:05 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं पीसीओडी कारण लक्षण और बचाव। इस विषय पर बातचीत कर रही हैं डॉक्टर अंजलि मौर्य जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं, इनसे बबीता बत्रा, आइए सुनते हैं।
1: बहनों, आजकल बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए चिंता का कारण बनती जा रही हैं। उसमें से एक है पीसीओडी। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मौर्य जी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, आज हम लोग पीसीओडी पर बात करेंगे, तो सबसे पहले बहुत सरल शब्दों में पीसीओडी क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे।
2: आपको हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसमें ओवरीज दोनों तरफ होती हैं, लेफ्ट राइट, और बीच में यूट्रस होता है जिसको बच्चेदानी भी कहते हैं।
1: जी,
2: तो ये ओवरीज की समस्या है यानी अंडाशय की।
1: अच्छा।
2: इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज।
1: अच्छा।
2: यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से महिला के अंडाशय अर्थात ओवरीज में सिस्ट बन जाता है। अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं जो नॉर्मली 18 से 24 एमएम की होते हैं, तब वे रप्चर होते हैं और एक रिलीज होता है।
1: जी,
2: लेकिन पीसीओडी है तो फॉलिकल मेच्योर होने से पहले ही सिस्ट बन जाते हैं, अर्थात फॉलिकल में फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होने पाता और ओवरीज के सारे फंक्शन इसकी वजह से प्रभावित होते हैं।
1: अच्छा। और ये समस्या आमतौर पर वैसे किस उम्र की महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है?
2: वैसे तो महिलाओं का जो फर्टिलिटी पीरियड होता है वो 15 से 35 साल का होता है,
1: अच्छा।
2: लेकिन हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए फर्टिलिटी पीरियड भी सबका अलग अलग हो सकता है।
1: अच्छा।
2: मगर जनरली देखा गया है कि जो 15 से 35 साल की महिलाएं हैं उसमें पीसीओडी की

0: संभावना सबसे ज्यादा होती है। और
1: अच्छा
0: आजकल तो देखा जा रहा है कि किशोरियों में यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
1: हाँ, बहुत सुनने में आ रहा है, जैसे बच्चियां हैं थी यही हमेशा बोलती हैं, पीसीओडी है, पीसीओडी है।
0: हाँ, इसका मतलब
1: हाँ
0: पीरियड चढ़ने लगता है, लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है।
1: हाँ,
0: हाँ
1: मतलब 1.5 से जो है वो ज्यादा दिन भी हो जाते हैं फिर।
0: जी।
1: और कि पीसीओडी होने के मतलब मुख्य कारण क्या है?
0: पीसीओडी होने का मुख्य कारण तो हार्मोनल इम्बैलेंस ही है,
1: जी
0: जैसे कि इसमें एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, इंसुलिन नामक हार्मोन ठीक से काम नहीं करता, जिससे डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है।
1: अच्छा
0: जो लोग बहुत आराम तलवी की जिंदगी जीते हैं, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं, उनमें
1: हाँ
0: होने की संभावना ज्यादा रहती है। या जो
1: अच्छा
0: लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चों में खासकर, जैसे अर्ली मॉर्निंग का स्कूल है, फिर लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, और मोटापा भी इसके कारण है।
1: अच्छा
0: हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड भी इसके कारण हो सकते हैं, और कभी कभी आनुवंशिक कारण भी देखा गया है इसका।
1: अच्छा हाँ, यही सब हो ही रहा है, बच्चों में तनाव है ही है, खान पान ठीक नहीं है तो मोटापा बढ़ ही रहा है,
0: जी
1: तो यही सब कारण से मतलब बीमारियां भी फिर बढ़ रही हैं।
0: जी जी
1: और ये डॉक्टर अंजलि जी, अब हम आपसे इसके लक्षण जानना चाहेंगे जिन्हें महिलाएं समय रहते पहचान सके कि हाँ भाई ये पीसीओडी वाली ही प्रॉब्लम हो रही है।
0: हाँ, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो अपने पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड इरेगुलर होने लगे, कभी
1: अच्छा
0: ज्यादा ब्लीडिंग, कभी कम ब्लीडिंग, या पीरियड चढ़ के आने लगे, या कभी कभी किसी किसी में तो पीरियड शुरू में तो आता है लेकिन बाद में बंद हो जाता है किसी कारण, इस
1: अच्छा
0: तरह की पीरियड मतलब इरेगुलरिटी होने लगे,
1: हाँ
0: और वजन तेजी से बढ़ने लगे, स्किन
1: अच्छा
0: बहुत ऑयली हो जाए, चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगे, फेस पे अनचाहे बाल हों, या बाल
1: अच्छा
0: झड़ने लगे।
1: हाँ
0: पीसीओडी की वजह से ओवुलेशन नहीं होने पाता, इस वजह से सबसे बड़ी समस्या आफ्टर मैरिज इनफर्टिलिटी की हो जाती है,
1: ओ
0: अर्थात वे कंसीव नहीं कर पाती। और मूड स्विंग्स भी देखा गया है टीनेजर्स में बहुत ज्यादा इसकी
1: बहुत
0: वजह से।
1: ज्यादा होता है। हाँ
0: जी
1: अच्छा, यही वजह है उसकी।
0: जी
1: अच्छा
0: कभी चिड़चिड़ापन, कभी घबराहट, कभी नींद का ना आना,
1: हाँ, कभी गुस्सा करने लग
0: हाँ
1: जाते
0: कभी,
1: हैं।
0: हाँ, ये सब लक्षण उनमें दिखने लगते हैं, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि हो सकता है पीसीओडी हो गया हो।
1: अच्छा, ये सब लक्षण है, पिंपल्स भी हाँ हो ही जाते हैं, ऑयली स्किन भी कई बार दिखती है
0: जी
1: इस तरह से। हाँ तो यही सब लक्षण है, मतलब अगर ये लक्षण हो तो फिर हमें डॉक्टर से
0: हाँ,
1: मिलना
0: जैसे
1: चाहिए। तो
0: जी
1: ये क्या मतलब हेरिडिटी का भी है इससे कोई संबंध?
0: हाँ, इसका हेरिडिटी से संबंध है, और
1: अच्छा
0: अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है पीसीओडी की तो आप में होने की बहुत ज्यादा संभावना है।
1: अच्छा मतलब घर में अगर पहले किसी को है तो ये फिर आगे बच्चों में बेटियों में होने की हो जाती है ना संभावना फिर।
0: जी हाँ, संभावना होती है।
1: हाँ, और पीसीओडी महिलाओं के मासिक धर्म और संतान प्राप्ति पर किस तरह असर डालती है? अभी आपने थोड़ा तो इस बारे में बताया था,
0: जी, जैसा
1: थोड़ा और
0: कि मैंने,
1: विस्तार से
0: हाँ
1: बता दीजिए।
0: जी, जैसा मैंने पहले बताया था, पीसीओडी की वजह से महिलाओं का पीरियड इरेगुलर होने लगता है, और इरेगुलर होता है और ओव्यूलेशन नहीं होने पाता सही समय से। जैसे नॉर्मली साइकिल की होती है कि 14 to 16 days के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है, तो वो नहीं होने पाता, इसकी वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण सारे हार्मोन सही से काम नहीं करते, तो ओवरी का फंक्शन भी प्रभावित होता है, और जब सिस्ट बन जाता है उसमें फ्लूइड भर जाता है तो एग भी रिलीज नहीं होते,
1: हाँ
0: और यही सबसे बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। जी
1: हाँ, मतलब पीसीओडी को भी बहुत हल्के में नहीं लिया जाए, है
0: नहीं,
1: ना?
0: जी
1: तो अगर मान लीजिए जब हो ही गया, ये प्रॉब्लम आई गई, तो अब उपचार की अगर हम बात करें तो क्या इलाज है इसका, क्या किया जाए इसमें?
0: उपचार की बात करें तो पीसीओडी को सही करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको 7-8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे बॉडी के हार्मोन संतुलित हो सके और बॉडी रिकवर हो सके। कोशिश
1: अच्छा
0: करें जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव फूड से बचें, हेल्दी डाइट लें, यानी बहुत ज्यादा वजन ना बढ़ने पाए,
1: हाँ
0: अपने वजन को संतुलित रखें, डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जरूर करें, ताकि स्ट्रेस का लेवल कम हो सके और हार्मोन बैलेंस हो सके। कुछ औषधियां भी ले सकते हैं, जैसे अशोक की छाल का काढ़ा ले सकते हैं और
1: अच्छा।
0: शतावरी चूर्ण ले सकते हैं जो कि ओवरीज के फंक्शन को ठीक करता है। एलोवेरा का गूदा ले सकते हैं, यह हार्मोन को बैलेंस करता है और रुके हुए पीरियड को लाने में मदद करता है।
1: जी
0: टोमेटो सूप या जूस ले सकते हैं, संतरा आंवला, विटामिन सी युक्त आहार का सेवन भी बहुत फायदेमंद है।
1: अच्छा। विटामिन सी मतलब लेना चाहिए इसमें।
0: जी
1: डॉक्टर अंजलि जी, एक प्रश्न मेरा ये है, थोड़ी बात अब डाइट की कर लेते हैं कि खाने पीने
0: जी
1: का ध्यान कैसे रखा जाए इसमें।
0: जी पीसीओडी में खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आप खाएंगी उसका आपके बॉडी पे असर होगा। इसलिए कोशिश करें कि हेल्दी ही खाएं, कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट्स जैसे अनार, केला, पपीता, संतरा, सेब ये सब लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सलाद अपने डाइट में शामिल करें, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम लें, ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव, सुगरी ड्रिंक से बचना चाहिए, ये बॉडी के हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं और ओवरीज के फंक्शन को प्रभावित करते हैं।
1: जी और हमारी बहनों को क्या संदेश देंगी?
0: मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल को सुधार कर हम पीसीओडी जैसी समस्या से बच सकते हैं। हो सके तो आप डेली अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, नहीं वक्त मिल रहा है, तो सुबह शाम थोड़ा सा टाइम निकाल कर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जरूर करें, 10 मिनट का मेडिटेशन करें ताकि स्ट्रेस का लेवल कम हो सके और जो हमारा तनावपूर्ण जीवन है उसमें थोड़ी राहत मिल सके। हेल्दी डाइट लें, आहार में प्रोटीन, फाइबर युक्त और विटामिन सी युक्त भोजन लें,
1: जी
0: और अगर आपकी 12 साल से ऊपर की बेटी है तो उसके डाइट का खास ध्यान रखें, क्योंकि किशोरियों में ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उनको स्ट्रेस से बचाने के लिए उन्हें एक्सरसाइज, योगा के लिए बढ़ावा दें।
1: जी
0: और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पीसीओडी के लक्षण आप में मिल रहे हैं, तो अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं ताकि समय रहते उसे ठीक किया जा सके। स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: जी तो आज पीसीओडी पर डॉक्टर अंजलि मौर्या जी से हमारी बातचीत हुई। आपने अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: श्रोताओं, आपने गवर्नमेंट के नए अभियान के बारे में तो सुना ही होगा, जो है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। श्रोताओं, बारिश की एक एक बूंद हमारे लिए अनमोल है। सोचिए, एक आसमान से पानी बरसता है और उसका कितना हिस्सा हम सहेज पाते हैं। अगर यही पानी बहकर नालियों और सड़कों में चला जाए तो गर्मियों में हमें पानी का कमी सामना करना पड़ सकता है। इसी सोच के साथ कैच द रेन अभियान हमें बारिश के पानी को वहीं रोकने और सहेजने के लिए प्रेरित करता है। घर हो, स्कूल हो या फिर कोई सार्वजनिक जगह, जहां भी संभव हो वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा सकती है। आइए इस अभियान को केवल सरकारी पहल न माने, बल्कि इसे जन भागीदारी का आंदोलन बनाए और पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प लें। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 27 से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारम्भ करते हुए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
3: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में, कपिल देव अग्रवाल हापुड़ में, अनिल राज

0: कौशाम्बी में, सुनील शर्मा गौतमबुद्ध नगर में, राज्य मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में और कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अम्बेडकर नगर, अयोध्या और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर जिले में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात कर दी गई है। नेपाल में बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों से प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत की युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज मेरठ के पुलिस लाइन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर और मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री वाजपेयी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका एम्स झज्जर से टेली कंसल्टेशन किया जाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEA PG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन कल रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अगले दिन 9:30 लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन कल रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 6:30 लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किया गया। जगह जगह मिलाद जुलूस भी निकाले गए। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर जुलूसे मोहम्मदी और जुलूसे मदहे सहाबा निकाले गए। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में मोहम्मदी मिशन द्वारा जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन किया गया, जो कि चौक स्थित ज्योतिबा फुले पार्क में पहुंचकर एक जलसे में परिवर्तित हो गया। वहीं जुलूसे मदहे सहाबा अमीनाबाद के ऐतिहासिक झंडा वाला पार्क से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह तक गया। जुलूस में विभिन्न अंजुमन नाद पढ़ते हुए चल रही थी। इससे पहले कल रात भर शहर के विभिन्न स्थानों पर जलसों और मुशायरों का आयोजन किया गया, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। जुलूस के रास्तों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सबील और भंडारों का आयोजन भी किया गया। मुमताज अली, आकाशवाणी लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सुल्तानपुर, जौनपुर, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और अमरोहा में भी मिलाद उन नबी का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर अमरोहा में भी आज जुलूस ए मोहम्मदी निकाले गए, जिसमें बड़ों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नाद पड़ी गयी। जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के समापन अवसर पर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गयी। सुरक्षा के चलते जुलूस के साथ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं दिव्यांगों के अधिकार में बदलाव, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश चंद्रा और भेंटकर्ता हैं अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा समाज में बहुत से दिव्यांग रहते हैं। किसी के पैर में समस्या है, किसी के हाथ में समस्या है, किसी तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रतिदिन के जीवन यापन में कठिनाई होती है। कानून इस संबंध में क्या कहता है, दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारा कानून किस तरह से काम करता है, तो इसी विषय पर अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डॉक्टर राकेश चंद्रा को, जो पूर्व आईएएस हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम।
2: तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि दिव्यांग कहते किसे हैं और क्या परसेंटेज होता है कि किसको दिव्यांग माने।
3: देखिए, दिव्यांग ये अभी तक ये माना जाता था कि ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से जुड़ी हुई एक समस्या है। इसका जो सामाजिक सरोकार है या इनको कोई अधिकार मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, ये मूल धारा से जुड़ने चाहिए नहीं जुड़ने चाहिए, इस पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया है कि ये भी ये एक सामाजिक समस्या भी है दिव्यांगता की, और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समानता के अधिकार इनको भी मिले, इसलिए इनके लिए कोई कानून होना चाहिए।
2: जी जी बिल्कुल।
3: तो वर्ष 1995 में सबसे पहले भारत सरकार ने एक समग्र कानून बनाया जिसे दिव्यांगता वो कह सकते हैं अधिनियम था। तो इस अधिनियम को काफी साल तक चलते हुए जब बीत गए तो वर्ष 2016 में भारत सरकार ने तमाम अध्ययन कराने के पश्चात एक और इसमें व्यापक संशोधन किए, जिससे ये इसका दायरा भी बढ़ गया और लोगों तक ये ज्यादा ये अब फायदेमंद भी हो रहा है।
2: सुगम हो गया।
3: तो इसकी जो कुछ विशेष बातें जो जोड़ी गई वो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा।
2: जी बताएं।
3: कि पहले दिव्यांगों की 1995 के कानून में केवल 7 श्रेणियां थीं।
2: जी।
3: इसे बढ़ाकर 21 श्रेणियां आप कर दी गई हैं। यानी विकलांग किसी प्रकार का भी हो, आंख से, नाक से, कान से, हाथों से, पैरों से, या और यहां तक कि आप समझिए कि जो एसिड अटैक है इसको भी जोड़ दिया गया इसमें।
2: अच्छा अच्छा।
3: और थैलेसेमिया है या जो पार्किंसन रोग होता है जो आजकल काफी कॉमन है, वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब 21 श्रेणियों में अब लोग दिव्यांग कहला, किसको हम दिव्यांग माने उसका एक पैमाना होना चाहिए। तो अब ये मान लिया कि अगर न्यूनतम 40% आपके अंदर विकलांगता है या उसका असर है तभी आप दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे,
2: चाहे पैर में हो, हाथ
3: कहीं
2: में
3: पर भी हो, आंख में भी, कहीं पर भी हो, लेकिन 40% उसका होना चाहिए तभी आपको सरकारी कानून का लाभ मिल सकेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
2: तो इसके लिए प्रमाण पत्र कौन?
3: हाँ, इसके लिए प्रमाण पत्र देने के लिए जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देते हैं इसको, वो विकलांगता प्रमाण पत्र देते हैं। कई प्रकार की जांचों के बाद सब करना पड़ता है, उसके बाद वो जारी होता है जिलों में, प्रदेश के सारे जिलों में। और जैसे छोट हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद होता है
2: जी जी।
3: जो जिले का सर्वोच्च मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसका कार्यालय होता है, वहां पर इसकी जांच पड़ताल होकर जारी होता है।
2: अच्छा, कई श्रेणियां होती हैं, कैसी जांच?
3: हाँ, तो ये अभी है कि जो वहां पे जो लोग संबंधित चिकित्सक हैं जो उसकी जांच करते हैं, उनके उनके पास वो मानक रहते हैं कि किस मानकों से हम चेक करेंगे विकलांगता को, और वो प्रतिशत भी वही निकालते हैं कि कितने प्रतिशत है। तो अगर 40% न्यूनतम है तो फिर वो विकलांगता की श्रेणी में माना जाता है और उसे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है।
2: अच्छा राकेश जी, हमने देखा है अक्सर नौकरियों में भी दिव्यांगों के लिए कुछ पद होते हैं, इसका क्या नियम है?
3: ये 2016 में जो परिवर्तन हुआ कानून में, उसमें ये भी आया कि न्यूनतम 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई दिव्यांगों के लिए, और न्यूनतम 5% जो है वो उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
2: अच्छा,
3: ऐसा है कि पहले, जैसे कुछ साल पहले तक तो, जैसे एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि सरकारी कलेक्ट्रेट जैसे हैं, सरकारी कार्यालयों में एक बुनकर रखा जाता था जिसके दृष्टिहीन होता था, अंधे।
2: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
3: वो सर कुर्सियों को बिनते थे,
2: बिना करते थे जी।
3: लेकिन अब ऐसी नई नई, चूंकि चिकित्सा विज्ञान भी अब बढ़ गया है, बहुत चीजें आ गई हैं आपके पास, तकनीकी चीजें जिनकी मदद से आप और भी काम कर सकते हैं, तो अब उनका दायरा भी बढ़ता जा रहा है।
2: तो इसमें हमारा कानून क्या मदद करता है हमारे देश में?
3: इसमें देखिए, ये तीन परिवर्तन से चौथा एक जो कानून की जो सबसे बड़ा फायदा हुआ आम जीवन में, कि अब एक कानून है इसलिए सबको पालन करना है, कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, प्राइवेट कार्यालय हैं, उनमें विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए हम ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते।
2: अच्छा।
3: तो उनके लिए एक रैंप बनाने की व्यवस्था की गई सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट में, कि वो रैंप से चढ़कर जाएंगे। ये हो गया बसों में, बसों में चढ़ने के लिए रैंप हो गई ताकि व्हील चेयर से जा सके। ऐसे ट्रेनों में भी की जा रही है, मतलब कुछ हो गया है, कुछ और हो रहा है, जहां नहीं हुआ है वहां भी आपको ये सहूलियत के लिए कम से कम उनका आवागमन के साधन अच्छे से हो जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। ये इसी कानून की बदौलत हुआ 2016 में जो परिवर्तन आया है।
2: जी जी।
3: हालांकि अब इसमें और भी काम होना है, पर एक अच्छी शुरुआत हो गई है। और अब तो मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके डिजिटल साधन हैं, जैसे इंटरनेट वाले जो काम हैं, इसमें भी करने के लिए अब मान ली कोई अंधा है, नहीं देख सकता तो कैसे काम करेगा। तो अब ये हो रहा है कि जैसे ब्रेल लिपि होती है जो जिसे दृष्टिहीन लोग को पढ़ सकते हैं, तो अब ब्रेल लिपि में उनके कीबोर्ड तैयार हो रहे कर लिए गए कि वो ब्रेल लिपि में, ताकि वो जो ये जो नया मीडियम आया है इसका भी उपयोग कर सके वो, तकनीकी का, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, इन सब का भी उपयोग कर सके तकनीक के माध्यम से।
2: हाँ, हमने देखा राकेश जी, जो कभी कभी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी दृष्टिबाधित हैं जो, वो भी ब्रेल लिपि से अपना आंसर देते हैं।
3: जी हाँ, ब्रेल लिपि तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ब्रेल लिपि में तो कोई भी चीज जिसमें पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, मतलब वो सब काम उसी पे हो रहे हैं और बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो उसका प्रशिक्षण होता है, कई जिलों में उसके लिए ट्रेनिंग से वो हैं, विद्यालय भी हैं, और कई जिलों में उसकी ट्रेनिंग की अलग से व्यवस्था की जाती है। तो वो उसके बाद लोग आराम से काम करते हैं, किसी कोई भी काम उनको लिखित पढ़ कर दे दीजिए, वो ब्रेल लिपि में कर लेंगे आराम से। तो ये पहले जो था कि जो कानून बनने के बाद अब एक बाध्यता जैसी हो गई कि आपको
2: करना है,
3: वरना पहले लोग जो चाहते थे करते थे, जो चाहते थे हटा देते थे कि इनको ये कैसे करेंगे। ये कानून का फायदा हुआ है।
2: और हमने देखा है कि टीवी पे अक्सर जो है मूक बधिर लोगों के लिए समाचार प्रसारित किया जाते हैं, इशारों से कुछ संकेत होते हैं उनसे किए जाते हैं,
3: जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए जो इशारों वाली भाषा जिसे आप साइन लैंग्वेज कहते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और हाँ, तो दूरदर्शन पे प्रयोग भारत सरकार ने किया है कि मूक बधिर का ये अलग से बुलेटिन भी आने लगे हैं अब तो, और नहीं तो कोई बोलता है तो साथ साथ एक रहता है इंटरप्रेटर जो इशारों की भाषा में समझाता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है, ताकि पढ़ भी लिख भी गए लेकिन वो क्या बोल रहा है, कोई बड़ी अथॉरिटी है, कोई नेता है, कोई और लोग हैं, विद्वान हैं, तो अब वो आसानी से समझ सकते हैं इस भाषा में, साइन लैंग्वेज में।
2: तो डॉक्टर राकेश, तो 2016 में कानून को भी 10 साल हो चुके हैं, तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है क्या?
3: जी हाँ, देखिए सुधार की आवश्यकता इसलिए है कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है सरकार की सोच में, कि अब वो स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्या नहीं मानते इसे।
2: अच्छा।
3: ये एक सामाजिक अभिशाप है और इसको दूर होना चाहिए, ये सोच से अब अच्छा, सरकार चल रही है, और इनको अधिकार भी मिलने चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: तो ये सामाजिक अधिकारिता का भी एक लिए बढ़ाने का भी प्रयास है, और इसी दृष्टिगत जो कानून बन रहे हैं वो इसी को दृष्टिगत इसमें प्रावधान रखे गए हैं, और आगे भी यही। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो सुझाव आए हैं 2016 कानून में, चूंकि अब 10 साल हो गए हैं तो अब तमाम एक्सपर्ट के सुझाव भी आए हैं। तो पहला तो ये है कि एक समय सीमा निर्धारित कर जाए कि सारे बसों में, सारी ट्रेन्स में, सब स्कूलों में, सब कॉलेजों में, बिल्डिंग्स में रैंप की व्यवस्था एक समय बद्ध तरीके से कि 5 साल में आपको बना देने हैं। 2016 कानून में ये कह दिया कि बनाने हैं, लेकिन समय सीमा ना होने से अब वो चीज बढ़ती जा रही है, तो एक तो एक समय सीमा निर्धारित कर लिया है कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको हम लाभ दे सकें, तो आप 5 साल कर दिए, 3 साल कर दीजिए, ताकि सब जगह तेजी से निर्माण कार्य हो सके। दूसरा ये है कि ये अभी जो दिक्कत सबसे बड़ी आती है इस पे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से, कि इतने उनको दौड़ना पड़ता है CMO ऑफिस और तरह तरह के कि उनके वो लॉजिस्टिक्स जिसे कहते हैं तमाम सूचनाएं और ये सब, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ये भी सुझाव है कि इसे हम PSC लेवल पर ले आए, वहां पर एक तैनात कर दें विशेषज्ञ को, ताकि PSC लेवल पर ही उनका वो
2: वही
3: जांच हो जाए और उनका प्रमाण पत्र बना सके। और प्रमाण पत्र बनाने में इनको बार बार दौड़ना ना पड़े
2: जी,
3: क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है,
2: दुखदायी
3: होता है, कोई बताने वाला भी नहीं होता है। और तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन माने मानकीकरण हो जाए कि PSC लेवल पे भी रहे, ऊपर भी रहे, ताकि जैसे ही वो पहुंचे वो फटाफट मानकों को देखकर उनका परीक्षण कर सके और कोशिश करें कि उसी दिन हो सके तो उसी दिन प्रमाण पत्र जारी कर दें। ये ब्रेल लिपि, ये अब तो पढ़े लिखे भी बहुत लोग हो रहे हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि अभी कुछ साल पहले दिव्यांग लड़की जिसने IAS में टॉप किया था,
2: अच्छा
3: हाँ, वो इस समय अच्छे पद पर है, वहाँ पे शायद हरियाणा में भारत सरकार में कहीं पर है। तो और हर साल अब काफी दिव्यांग लड़के लड़कियां IAS की परीक्षा, जो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, उसमें लोग आ रहे हैं।
2: अरे वाह,
3: तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो उनको उनके संग अगर हम तकनीक का भी और सहारा दे दें, जो नए नए गजट्स आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, उनसे भी हम उनको रूबरू कराते रहे, तो वो वैसी परफॉर्मेंस देते हैं जैसे कि सामान्य जन देता है। तो इसको भी दायरा और बढ़ाना चाहिए, ताकि वो उनमें ये अपने काम को करने में और सहूलियत हो सके, अपने को उस धारा मुख्य धारा में
2: जोड़ सकें।
3: परिणाम ये मिला है कि आप देखिए हर पैरा ओलंपिक्स में या पैरा के जो विश्व कप होते हैं या और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में आप देखेंगे कि भारत के कितने लोग, न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं, वो
2: पदक जीत रहे हैं,
3: स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, और एथलेटिक्स जैसी चीजों में भी
2: विश्व रिकॉर्ड भी बना रहे हैं,
3: रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो जो पिछले कुछ सालों में ये जो प्रयास हुआ है कि हमें दिव्यांगजनों को भी खेल के क्षेत्र में, क्योंकि और क्षेत्र में तो कुछ प्रगति कर रहे थे लेकिन खेल में
2: भी जुट गए,
3: पिछड़े थे, तो इन्होंने उसको पकड़ा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम है। हर आप देखिए हर कुछ समय पे अभी पैरालंपिक्स हुए हैं, उसमें हमारे कई 12-13 कितने गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते, सिल्वर मेडल जीते, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि ये जो सुझाव हैं एक्सपर्ट्स के, और इनको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 2016 के जो कानून बना, उसमें जो परिवर्तन आया, इसमें एक बहुत अच्छी बात की कि इसमें आपराधिक प्रावधान भी डाल दिए गए।
2: अच्छा,
3: अगर आप नहीं करेंगे तो न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है।
2: अच्छा, जो अवॉइड करेगा,
3: जो अवॉइड करेगा या उनको प्रताड़ित करेगा इस तरीके से, तो ये इसको बरकरार रखना चाहिए। जबकि एक तरफ से एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉरपोरेट जगत इसको हटाने के लिए,
2: अच्छा हम लोगों ने बात की स्पोर्ट्स के बारे में और कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में, तो क्या जो हमारी फिल्म जगत है या जो टीवी जगत है उसमें भी इनका योगदान माना जाता है?
3: जी हाँ बिल्कुल। और अब तो मैंने बताया कि जैसे जब वो ये ब्रेल लिपि सीख जाते हैं तो वो जो गानों की भाषा होती है ना,
2: हाँ?
3: उसको भी ब्रेल में कर देते हैं।
2: अच्छा,
3: तो वो उससे वो छू कर वो उसके धुने बनाना ये सब करना अभी सब कर रहे हैं लोग, काफी लोग।
2: अच्छा, अच्छा।
3: ऐसे वो जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भी ब्रेल में लिख के वो कर सकते हैं। तो एक शुरुआत तो हो गई है, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ तो दिव्यता होती है, मतलब जो आम आदमी में नहीं होती है।
2: जी जी जी।
3: तो उसको उन्होंने पकड़ा है और अच्छे से प्रयास यही है कि दिव्यांग समान मुख्य धारा में जुड़ सके, आ सके।
2: तो डॉक्टर राकेश जी, आप ने हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी दिव्यांगों के सुधार के लिए, दिव्यांगों की सुविधा के लिए जो भारत सरकार कर रही है उसका भी आपने जिक्र किया है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिव्यांगों के अधिकारों में बदलाव इस विषय पर की गई भेंट वार्ता, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश चंद्रा और भेंटकर्ता थे अतिश श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ के
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म साथिया से, साधना सरगम और मधुश्री की आवाजों में।

0: साथिया इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और मधुश्री को। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत था A.R. रहमान का।
1: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
2: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चाहत से अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जमीर काजमी के बोल है और संगीत है श्याम सुरेंद्र का।

चार हद इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, जमीर काजमी के बोल थे और संगीत था श्याम सुरेंद्र का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अभिजीत की आवाज में, फिल्म का नाम है चलते चलते। शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं अदनान सामी की आवाज से। शब्द रचना समीर के हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले अदनान सामी को।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और रात्रि के 8:08 हो रहे हैं। कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं शब्द रचना जमीर काजमी के हैं और आप सुनेंगे पंकज उदास को।

102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिल तो पागल है, आइए इस फिल्म में सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है उत्तम सिंह का।

आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था उत्तम सिंह का दिल तो पागल है। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को। चांद सा रोशन चेहरा, आइए इस फिल्म में सुनते हैं उदित नारायण को। शब्द रचना समीर के हैं और संगीत है जतिन ललित का।

आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। बेताब इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फाल्गुनी पाठक को।

शब्द रचना गुलजार की थी और आप सुन रहे थे साधना सरगम को। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। अब आइए सुनते हैं अभिजीत को। शब्द रचना नुसरत बद्र के हैं।

शब्द रचना नुसरत पत्र के थे और आप सुन रहे थे अभिजीत को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-98-51-31-6807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 977-97-09-10-7500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी

0: मतदाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: एक एक अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें

0: इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

अनुराग इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में।
2: चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डी एक्सेलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
4: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पर यह कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ।
3: हर्ष जी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी, क्या कहेंगे आप?
0: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो अभी कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डी एस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पोलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं है। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांगी ने और अजीत डोवल ने, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के परस्पेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
3: जी हाँ बिल्कुल, जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो LAC की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
4: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है, और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़कर के स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें, और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं
3: जी।
4: लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में विश्वास की कमी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही है डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पिटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रेजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
3: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रेडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र भी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल समिट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूव होता

0: तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
1: मेजर जनरल अशोक जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट्स है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
2: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था। और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजीला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूप से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है? और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
0: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ, वो इसलिए हुआ, ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक, जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए, जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है। और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है, तो चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है, और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है, उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर, ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जो पर।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से, और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से, क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

सर। कार्यक्रम का पहला गीत इस फिल्म से कुमार सानू की आवाज में। कतिल शिफाई के बोल हैं और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

मोहरा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था बिजू शाह का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है जख्मी। गौहर कानपुरी के बोल हैं और संगीत है बप्पी।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। और इसी के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान। आइए सुनते हैं इनके स्वर में राग बागेश्वरी बहार।

ये उस्ताद विलायत हुसैन खान और आप सुन रहे थे इनके स्वर में राग बागेश्वरी बहार। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारत

0: समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9779851318 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरल वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेस ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।